हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर आज

बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित

0: उचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has become the longest-serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. The world leaders hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anura Kumar Dissanayake, in a letter said that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
2: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India.

ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है। हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत और सरल हो जाता है। हम अपने समय और धन को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है।

यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं, तो ईश्वर हमारी ओर हजार कदमों के साथ आते हैं।

जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी जगह उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता। ईश्वर सत्य है और वो लोगों के दिलों में विराजमान है। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बने रहने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए केवल सिर का झुकना काफी नहीं है, उनकी कृपा तो तब बरसती है जब आप अपने मन को भी झुकाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर, आपके हृदय में निवास करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, अजपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज़्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी एक घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें, किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदार

0: होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा। जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहाँ पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है। जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। जो क्षण बीत गया वो दुनिया की सारी संपदा दे करके भी हम वापिस नहीं पा सकते, और जो क्षण आने वाला है, जो कैसा होगा हमें जिसका पता नहीं है, वो जब तक वर्तमान नहीं बन जाता हम उसमें कैसे जिएंगे। जीना तो हमें वर्तमान में है, लेकिन हम एक ऐसा मन लिए हुए चल रहे हैं जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या फिर भविष्यकाल में जीना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीना नहीं आया, हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। साधना ध्यान हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, हमें अपने मन का मालिक भी बनाता है, सही अर्थों में गुलामी से मुक्ति दिलाता है। दुनिया में सब कुछ पा लेने का भी कोई सार नहीं यदि स्वयं को नहीं पाया, स्वयं के मालिक नहीं बने। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली, मिला के उसकी तार से बेतार को, पैदा उससे मिलने की हालात कर ली।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती हराम वास्ते, जानकारी बीजोपचार के लाभ। 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम मानस गान, आज सुनवाएंगे भाग संख्या 270। सुप्रभात में बात करेंगे साहस से समाधान, जीवन में श्रम का महत्व और एकता में बल है, साथ ही साथ कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी उठाएंगे। 8:45 पर सुगम संगीत और 9:10 पर मरुमंगल में आज कलाकार होंगे शंकर दमामी। फिल्म संगीत 9:30 पर कार्यक्रम सुहाना सफर प्रातः 10:00, प्रातः 11:00 कार्यक्रम सैनिकों के लिए और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। खेत खलिहान में आज बात करेंगे पॉलीथीन घातक है पशुधन के लिए। महिला जगत में 1:05 पर जानकारी देंगे उत्तम नागरिक के कर्तव्य, खादी के वस्त्रों का महत्व, बच्चों के नखरे कहने के वक्त, मुल्तानी मिट्टी के फायदे। 2:30 पर सुनिए फिल्म संगीत और 3:00 उर्दू सर्विस के प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:00 युववाणी में बात करेंगे आधुनिकता के मायने, फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद और आज का इतिहास। 6:05 पर कार्यक्रम सराय की और शाम 7:00 चौपाल में आज आपके व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर, साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। फिल्म संगीत 7:45 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत रात्रि 9:15

मिनट पर और हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो मन भावन, निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया, प्रस्तुतकर्ता विकास पारीक। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: U.S. officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and the two pilots were rescued. Following U.S. strikes, explosions were heard in the Iranian cities of Sirik Mina, Bandar Abbas and on Qeshm Island, which borders the Strait of Hormuz. President Donald Trump said the U.S. response to Iran downing a U.S. helicopter is very strong, very powerful. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will be on a two-day official visit to Bulgaria and Finland starting today. The Ministry of External Affairs said that during his visit to Bulgaria, Dr. Jayashankar will meet the Bulgarian leadership and hold discussions with his counterpart. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in a close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Opting to bat first, India scored 277 for 6 in stipulated 50 overs, riding in Rituraj Gaikwad's 101 runs. Skipper Tilak Varma also scored 60 runs. Fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. And IMD has forecast heatwave conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and West Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। खेती हरावास्ते कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे बीजोपचार के लाभ।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करांगा आप इस्लाम बीज उपचार को महत्व के है आप बात जाननी आपने किसान भाइयों वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में देखा आप कोई भी फसल बुआई करा तो बिंग माँ अनेक भांत का कीट अनेक भांत का रोग वे लाग जाए और बांगो ध्यान तो रखना ही चाहिए साग साग इन बात ने भी जाननी चाहिए कि अगर आप फसलों को बीज ने उपचार कर लेवा तो बिंगू महत्व कितो को जे बी बाद आपन के फायदा हुआ के लाभ है और के जानकारी ले गेर आप ये बात ने जाना कि बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो किसान भाइयों सगली फसलों का बीज मुख्य रूप से बीज और मृदा जनित रोग और नाशी जीवाशु प्रभावित हुए जका के फसल के बीजा ने उगने और बाकी बढ़वार करने में प्रभावित करे बने यानी कि बढ़वार जिकी है वह कम करे। इनके अलावा किसान भाइयों बीज उपचार के तहत कीटनाशी जैविक कीटनाशी की निर्धारित मात्रा बीजा ने समान रूप से उगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे जबकि देश के बहुत सा किसान इसे है जगह बीज उपचार क्यों अनभिज्ञ है बन पूरी जानकारी कोनी और ई प्रक्रिया ने वह अपनावे कोनी। अगर किसान ई प्रक्रिया ने अपनावे तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि आ एक वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत जानकारी आ जाए और बीजा ने उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए और बन बीज उपचार को महत्व जानना चाहिए। किसान भाइयों बीज उपचार कीट और रोगों से छुटकारा पाने को एक आसान तरीको है बहुत ही सस्तो तरीको है बहुत ही कम खर्चीलो तरीको है। इन अंतर्गत दवाई की 2-10 ग्राम प्रति मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज के वास्ते पर्याप्त सर है और इशु वातावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव है आ सबसे बड़ी बात है पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होनी। तो आपने किसान भैया ने मामूली सी दवा लेगी और बीज उपचार करके और बुआई करना चाहिए कोई भी फसल को बीज उपचार करे बे तो बहुत ही बढ़िया बात है ई महत्व ने समझना चाहिए ई बात ने जानना चाहिए। किसान भाइयों वो देखी गई है कि किसान 70% खुद को उत्पादित बीज चाहे वे कोई भी फसल बुआई करे यानी खेत के मान जकी फसल बीजी और बीच जो अन्न प्राप्त हुए या जकी भी चीज़ प्राप्त हुई फसल प्राप्त हुई बिंगो ही बीज लेकर इस्तेमाल करे जको के आम खास आप देखा कि वो उपचारित कौन ही होनी और किसान भाई बिना उपचारित भी कौन करे नहीं और सीधो ही खेत के माँ बुआई कर दिए तो भी बाद के माँ फसल के माँ अनेक भांत का कीट अनेक भांत का रोग जो है वे आ जाए। किसान भाइयों आम खास देखी गई है कि बीज उपचार के वास्ते बीज उपचार ड्रम को प्रयोग करनो हुए जगह से बीज ने अच्छी तरह आप उपचारित कर सका बीज के ऊपर दवाई की पतली परत बन जाए तो ये बात ने समझना चाहिए किसान भैया ने आ एक महत्वशाली बात है जानकारी होनी चाहिए। बीज उपचार के टाइम शरीर ने पूरा ढकन वाला कपड़ा यानी कि पूरा बाजू का कपड़ा बाजूदार कपड़ा कमीज पूरी पैंट चश्मा दस्ताना चेहरे पर मास्क आंगो जरूर जरूर प्रयोग करना चाहिए। खुले मुँह या खुले चेहरे से आप बीज उपचार नहीं करना चाहिए क्योंकि दवाइयाँ जो की है बांगो जेरी

प्रभाव जो है वो अपने शरीर पर पड़ सके। अगर आप पूरा बाजू की कमीज पूरी पैंट चश्मे दस्तानों पहन गए और फिर आप काम करेंगे तो कोई नुकसान कोई नहीं हुए नहीं। किसान भाइयों, बीज उपचार से बीजा को अच्छो अंकुरण हुए, अच्छी बढ़वार, कीट और बीमारियां पर रोकथाम पहले दिन से शुरू हो जाए, परिणाम वो हुआ कि स्वस्थ पौधा तैयार होगा और उत्पादन अपनों बढ़ेगा। तो इस वास्ते किसान भाइयों ये महत्व ने जानना चाहिए कि फसलों को बीज उपचार करके आप बुआई करा। ऐ सारी बातों ने ध्यान में रखता थका आपने देश की सरकार देशव्यापी अभियान चला के भी खरीफ फसलों को बीज उपचार करने को एक सुनिश्चित तरीको अपनावे और बहुत ही बढ़िया बात है, इसे अपने किसान भाइयों लाभ मिले। सगला कीटनाशी उद्योग संगठन, आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि क्लब, महिला संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वह भी खुद इन अभियान ने सफल बनाने वास्ते सक्रिय भूमिका निभागी और अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग करें तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। इशू आम और खास किसान ने पूरी जानकारी हो जाए तो वह इन बात ने समझ लिया और पूरी तरह बीज ने उपचारित करके फिर खेती करे तो लाभ ज़्यादा मिले। और इनके अलावा जरूरी बात आई कि किसानों ने चाहिए कि देश हित में, खुद के हित में और पूरे समाज के हित में इन बात ने जाने बे और बीज ने बिना उपचारित करे कतई खेत में न बुआई करे। इन काम खातर नज़दीक को कोई कृषि अधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि अनुसंधान केंद्र है तो बठूँ, या कोई और संगठन है तो बठूँ भी आपने किसान जगह वह सहायता प्राप्त कर सके, लाभ ले सके। तो आप बात का ध्यान जरूर आपने किसान भाई रखेगा। पर अब किसान भाइयों हूँ चालू, राम राम सा राम राम।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, जीवन है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज नॉट अ बंच ऑफ रोजेस, जिंदगी गुलाब का गुलदस्ता नहीं है। हमारी जिंदगी में साहस से ही समाधान मिलता है। शिकायत करना या अपनी मजबूरी बताना या अपनी समस्या बता देना, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। जो व्यक्ति आम जीवन से ज़्यादा पैसा कमा लेता है या जिसे हम करोड़पति अरबपति कहें, वो लोग कभी कंप्लेंट नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते। हर समस्या का समाधान साहस से निकालना होता है, तभी सफलता मिलती है। यदि हम अपने बच्चों को छोटे होते से, उनके बचपन से ये सिखाएं कि किसी भी समस्या का हल निकालना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा उन्हें परेशान कर रहा है स्कूल में, तो उससे बातचीत करने का ढंग बदलें। यदि कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो अपने अध्यापक से पूछें। शिकायत करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, साहस से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। पूरा जीवन है एक बच्चे के आगे, जिसने जीवन को भी जीना है, जिसने जिंदगी की समस्याओं का सामना करना है। कंप्लेनिंग तो किसी भी समस्या का हल नहीं है। सुनते हैं एक गीत, फिर बातें और भी करेंगे।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक

0: बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक अंतस का उजास सुनिए 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे।
3: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
4: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं चोर हो गया हूँ। मैं
5: अभी, अभी,
3: अभी,
4: मैं जा रहा हूँ।
2: याद रखें 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे सुने नाटक अंतस का उजास।
6: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
7: गलतियों का एहसास
2: सुनना ना भूलें। आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे नाटक अंतस का उजास।
7: दोस्तों एक कहावत है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर क्या विश्वास करेंगे। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रहस्य उसे आदत बना लेना है। जीवन में श्रम का भी बहुत महत्व है। अभी जैसे अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कंप्लेनिंग गलत है, शिकायत करना गलत है, उस समस्या का समाधान निकालना ज़रूरी है, वो आप अपने दिमाग से निकालें, अपने शरीर से निकालें। तो जितना हमें ज़रूरत है अपने दिमाग का प्रयोग करने की, उतनी हमें अपने शरीर की भी ज़रूरत होती है। इसलिए जीवन में श्रम का भी उतना ही महत्व है। श्रम को अभ्यास बना देना बड़ा ज़रूरी है ना। कहते हैं कि श्रम जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। एक सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों को यदि हम उनकी जीवनी देखें तो जीवन में उन्होंने बहुत श्रम किया। श्रम करने का अर्थ ये ज़रूरी नहीं है कि आप खेत में हल चलाएं या मजदूरी जैसा कोई काम करें। श्रम करने का अर्थ है आप अपने जीवन के संघर्ष में श्रम करें। आत्मविश्वासी लोग कभी भी आत्मसंदेह नहीं करते और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो अपने श्रम से हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। यहाँ तक भी वो गलतियाँ भी करते हैं तो उनसे सीखते हैं और दोबारा से खड़े होते हैं। फिर से खड़े होने के लिए श्रम तो चाहिए ना। इसलिए जीवन में आलस्य को छोड़ करके श्रम को अपना साथी बनाएं, श्रम को अपनी आदत बनाएं। बातें और भी करेंगे, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, एकता में बल है, ये सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे देश ने एकजुट होकर जिस तरह से समस्याओं का मुकाबला किया, वो सबके सामने है। जिन समाजों में एकता है, जिन परिवारों में एकता है, जिस गांव में, जिस शहर में एकता है, वहाँ कभी लड़ाई झगड़े नहीं, कभी कोई तीज त्यौहार सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं, जिंदगी का आनंद उठाते हैं। एकता में जिंदगी का आनंद है, जीवन का आनंद है। साथ रहें, खुश रहें, मिलकर चलें। सुनते हैं एक और की।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में

0: स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के

0: पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण

0: है जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के

0: and completion of 12 years of government. Center unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जीरामजी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वजीर आजम मोदी की लगातार मुद्दतेकार 4399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनव्व पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये एक काबिल जिक्र हुसूलियाबी है। ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क्यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आजादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वजीर आजम मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी का एक मामूली समाजी और इक्तसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि खानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इक्तसादी तरक्की का नजारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने PM मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोजगार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोजगार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोजगार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज्यादा नौजवान ने PM विकसित भारत रोजगार योजना से फायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को PM कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरेक मिनाब, बंदराबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गई। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाकवामी स्टेडियम में 3 मुल्कों की 8 टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इनकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बैठक रखी गई है। बैठक में एनडीए के शासन करने वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा आरती और प्रार्थना सभाएं रखी गई हैं। देवस्थान विभाग के सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जैसलमेर स्थित बांके बिहारी मंदिर और पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर में विशेष पूजा की गई। वहीं पाली के सुमेरपुर के जोगेश्वर महादेव मंदिर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पूजा कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बारा में भी जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पिछले 12 सालों में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है। सवाई माधोपुर के रहने वाले जयदीप सिंह राजावत ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को उपयोगी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: मेरा नाम जयदीप सिंह राजावत है। मैंने सूर्यघर योजना में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगवाया था, जिसमें मैंने मेरा जो राशि थी वो 2 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से मुझे 78,000 रुपये सब्सिडी के द्वारा किए गए केंद्र सरकार के, और इस स्कीम से बहुत लाभान्वित हुआ मैं। मुझे अभी तक एक भी बिल का राशि देने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इस स्कीम के लिए आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आगे निरंतर बनी रहे।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देश भर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ

0: आरंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल से मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का और 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ये नारी चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर पर लगाई जा रही है। इन चौपालों का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। जैसलमेर में नगर परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नारी चौपाल रखी गई है। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। बाड़मेर में होने वाले आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी और लाभार्थी महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर के सभी 5 ब्लॉक में नारी चौपाल लगाई जाएंगी। इनमें राजीविका से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हिस्सा लेंगी। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सभागार में होने वाली नारी चौपाल में महिलाओं के लिए विभिन्न सत्र रखे गए हैं।
2: नारी चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम जैसे विषयों पर जागरूकता संवाद सत्र आयोजित कर महिलाओं में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में राजीविका समूहों की सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन तथा विभिन्न विभागों की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। कल हुई इस आगजनी की घटना में कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी जबकि अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा है कि ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। मामले की जांच की जा रही है तथा अवैध रूप से संचालित गोदाम और फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। ये भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 4 सूत्री रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सीनियर बी हैंड बैलेंस की व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने सीनियर सी महिला बैक बेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ये पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी ये सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। तेज उमस भरी गर्मी और धूप की तपिश से लोग प्रभावित हैं। कल ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू में पारा 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर

और बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने और कुछ स्थानों पर हीट वेव चलने तथा तेज धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। वहीं आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु

0: इतने लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में आज नारी चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम मुरमंगल में आज हम आपको सुनवाएंगे लोक गायक शंकर दमामी के गाए कुछ लोकगीत।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: सोबर सजल में रहे तो पथरी तजे नग हथ बे हथी कोमड़ी नव हथों के कौन जठे झिक तो चीक लोट तोड़ झिक।

मरमंगल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लोक गायक शंकर दमामी के गाए कुछ लोक गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: में हम उज्ज्वला गैस।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अब सुनते हैं फिल्म याराना का गीत। किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में, गीत अनजान का और संगीत राजेश रोशन का।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

फिल्म प्रेम पर्वत से सुनिए लता मंगेशकर को, गीत जानिसा अख्तर का और संगीत जयदेव का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म काला पत्थर का गीत सुनिए। स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत राजेश रोशन का।

अब सुनते हैं फिल्म गीत का नगमा, मोहम्मद रफी के स्वरों में। गीत अनंत बख्शी का और संगीत कल्याण जी, अनंत जी का।

फिल्म खलनायक का गीत सुनिए, अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम सुहाना सफर आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत। अनुराधा पौड़वाल और मनोहर उदास के स्वरों में, गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म चांदनी का गीत सुनिए। आशा भोंसले और विनोद राठौड़ के स्वर में गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

0: की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फिल्म राजा रानी का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का।

आया सावन झूम के। आइए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुने, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: झुक गया आसमान। आइए मोहम्मद रफी को सुने, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत सुनिए, किशोर कुमार के स्वरों में, गीत इंदी वर्का और संगीत बप्पी लहरी का।

मुकद्दर का सिकंदर। आइए किशोर कुमार को सुने, गीत अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अजीब सुनते फिल्म नगीना से कविता कृष्णमूर्ति को, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर।

अभी आपने जानवर इस फिल्म का ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं बेटी बेटे इस फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत है।

बड़ी बहन, आवाज दी है लता मंगेशकर और प्रेम लता ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
1: आपका ये वजह ही सही कि हम

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है सरगम, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए सुनते हैं ये गीत, बगावत, ये है फिल्म का नाम। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं शोर, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं शोहनी महिवाल, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत, आदमी और इंसान। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा और संगीत।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। देख कबीरा रोया, इस फिल्म का ये गीत है, आवाज दी है तलत महमूद ने।

0: आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है देश प्रेमी।
1: नफरत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। खेत खलिहान में किसान भाई सुनेंगे जानकारी, पॉलीथीन घातक है पशुधन के लिए। समय रहेगा 12:50। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे उत्तम नागरिक के कर्तव्य, खादी के वस्त्रों का महत्व, बच्चों के नखरे सहने के वक्त। दो बजे श्रोता दोपहर समाचार सुन सकते हैं, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 2:30 पर श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। तीन बजे उर्दू सर्विस और संध्या 5 शुभवाणी का प्रसारण किया जाएगा। शुभवाणी में श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। संध्या 6 कार्यक्रम विवरण और 6:05 पर श्रोता सराहिकी कार्यक्रम सुन सकते हैं। चौपाल का प्रसारण संध्या 7 किया जाएगा। इसमें आज किसान भाई पत्रोत्तर कार्यक्रम सुन सकते हैं। 7:45 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं और रात्रि 8 एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम रहेगा। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:30 पर। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। रात्रि 10 श्रोता हेलो मन भवन फोन कॉल्स पर आधारित ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसका निर्देशन और संयोजन नवीन सिसोदिया का रहेगा और प्रस्तोता रहेंगे विकास पारीख।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। 12:05 हुए हैं। आप श्रोता सुने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में

एक बातें करेंगे प्रकृति और इंसान की, और बातें करेंगे प्रकृति से जुड़ी हुई जानवरों और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की। श्रोताओं, कहते हैं कि अगर इंसान इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है तो प्रकृति उसकी सबसे बड़ी गुरु है। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक इंसान का हर पल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारी पहली सांस पेड़ों की दी हुई ऑक्सीजन से ही चलती है। हमारी प्यास नदियों और झीलों के जल से बुझती है, और हमारा भोजन खेतों की हरियाली से हमारे घर तक पहुंचता है। प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाट हमें जगाती है, ठंडी हवाएं मन को सुकून देती है, बादलों की फुहारे धरती को नई ऊर्जा देती है, और पर्वत हमें अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति हर दिन बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, घटते जंगल और सूखते जल स्रोत हमें चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आइए हम संकल्प लें कि धरती पर पेड़ लगाएंगे, जल बचाएंगे और प्रकृति के हर रूप का सम्मान करेंगे, क्योंकि प्रकृति जब मुस्कुराती है तभी इंसान का जीवन भी खुशहाल बनता है।

श्रोताओं, प्रकृति से जुड़ाव मनुष्य का अद्भुत संबंध है और प्रकृति के साथ पक्षियों का मेल न हो ये तो हो ही नहीं सकता। जब सुबह की पहली किरण धरती पर उतरती है तब सबसे पहले जो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है वह पक्षियों का कलरव होता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने इन नन्हे दूतों के माध्यम से हमें नए दिन का संदेश दे रही है।

धरती पर उतरती है, तब सबसे पहले जो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है वह पक्षियों का कलरव होता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने इन नन्हे दूतों के माध्यम से हमें नए दिन का संदेश दे रही है। पक्षी केवल आकाश में उड़ने वाले जीव नहीं है, बल्कि प्रकृति की जीवंत धड़कन है। उनकी चहचहाट में संगीत है, उनकी उड़ान में स्वतंत्रता और उनके जीवन में संघर्ष के साथ साथ आशा का संदेश भी छिपा है। चाहे वो गौरैया, कोयल, बुलबुल, मोर और अनगिनत पक्षी हमारी प्रकृति को, हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं। वे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर नए पेड़ों का जन्म है वो कराते हैं, और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में इनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ उनके आसियाने कम होते जा रहे हैं। कटते पेड़, बढ़ता प्रदूषण, और जो हमारे कच्चे घर हुआ करते थे उनकी जगह पक्के घर बनते जा रहे हैं, जिसके कारण जो उनका आशियाना था वो छिन रहा है। बहुत से लोग जो प्रकृति प्रेमी है वो बनावटी आशियाने लकड़ी के हो चाहे नारियल के हो वो जगह जगह पर लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं कि वो प्रकृति को बचाने में जो भी अपना योगदान है वो दे रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, बात कर रहे थे प्रकृति और मनुष्य की जो आपसी रिलेशन है, जो संबंध है उस पर। तो बात करते हैं प्रकृति और फूलों की। जरा सोचिए, एक फूल क्यों खिलता है, उसकी खुशबू क्यों बिखरती है, रंग बिरंगी तितलियां क्यों उसके आसपास मंडराती है? क्योंकि प्रकृति ने हर जीव को किसी न किसी उद्देश्य और संबंध के साथ बनाया है। जिस प्रकार इंसान परिवार और प्रियजनों के जुड़ाव महसूस करता है, उसी तरह पक्षी भी अपने साथियों और बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। वे अपने बच्चों को दाना खिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उड़ना सिखाते हैं। कई पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। प्रकृति के इस संसार में प्रेम, अपनापन और समर्पण केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। फूलों की खुशबू, तितलियों का उड़ना, उनका नृत्य, पक्षियों का मधुर संगीत और पेड़ों की छांव हमें ये संदेश देती है कि जीवन का सबसे सुंदर रूप साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने में है। जब हम किसी खिले फूल को देखते हैं, किसी पक्षी का गीत सुनते हैं या किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं, तब अनजाने में हमारा मन भी प्रकृति से जुड़ जाता है। शायद यही कारण है कि प्रकृति के बीच पहुंचते ही मन को शांति और खुशी का अनुभव होता है।
1: शबनम, ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
2: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी,
1: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
2: खुदा करे

श्रोता हूं, बात कर रहे हैं प्रकृति और मनुष्य की। आज मैं आपको अपने घर की एक छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर सच्ची घटना बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैंने अपने घर में एक पौधा लगाया था। मुझे क्या पता था कि यही पौधा किसी का घर बन जाएगा। एक दिन एक बुलबुल के जोड़े ने उस पेड़ में अपना घोंसला बना लिया। धीरे धीरे उस घोंसले में नन्हे मेहमान आए और अब उनके बच्चों की प्यारी प्यारी चहचहट पूरे घर में सुनाई देती है। हर दिन मैं देखता हूँ कि बुलबुल और उसका साथी दोनों मिलकर बच्चों के लिए दाना लेकर आते हैं। कभी एक पहरा देता है तो दूसरा भोजन की तलाश में जाता है। फिर दोनों मिलकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन देखकर लगता है कि ममता, जिम्मेदारी और परिवार का महत्व केवल इंसान ही नहीं पक्षी भी अच्छी तरह से समझते हैं। जब मैं घोंसले के पास से गुजरता हूँ तो बुलबुल मुझे ध्यान से देखती है। शायद वह यह सुनिश्चित करती है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं और मैं भी रोज़ उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था करता हूँ। अब ऐसा लगता है कि जैसे वे केवल पक्षी नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। इस छोटी सी घटना ने मुझे सिखाया है कि यदि हम प्रकृति को थोड़ा सा प्यार और सुरक्षित स्थान दें तो हमें बदले में ढेर सारी खुशियाँ, संगीत और जीवन की नई सीख मिलती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। आप श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में गई चंद गज़लें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:50 हुए हैं, अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है पॉलीथीन घातक है पशुधन के लिए।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करा आप आज पशुधन के बारे में, क्योंकि आपने जो किसान भाई लोग है भाई खेती के साथ साथ पशुधन भी रखे है, और पशुधन ने अगर आप बेहतर तरीका से बढ़िया तरीका से ना रखांगा तो आपने घाटों भी हो सके, और कई चीज की बातें हैं बांग ध्यान रखना जरूरी है। जो विजय शुक्र का आप पशुपालन जो है वो बढ़िया कर सका, बांग स्वास्थ्य को बढ़िया तरीका से ध्यान रख के अगर आप पशुपालन करा तो आपने ज़्यादा मुनाफो है। देखा नहीं तो आपने किया कि अब जो भाई लोग है वे पशुपालन तो करे, लेकिन कई जिकी स्वास्थ्य संबंधित जकी जानकारियां हैं जकी बातें हैं बांगो ध्यान को रखे नहीं। आपने किया कि घर बरता हुआ अगर कोई चीज़ ले गया वहाँ तो कई बार आप बाजार से ले आवा या फिर कठी दुकान से ले गया वहाँ या फिर कट्ठे से भी अगर आप ले गया तो बे जकी चीज़ां ले गया बंग माँ किया कि आप जकी पोलीथीन वाली थैलियाँ है बे ले गया वहाँ, और ये जकी पोलीथीन की थैलियाँ है ये पशुधन के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आप देखे करा कि आप कई बार

ले गया वहाँ, या फिर भी जगह घरे सब्जी का जगह छिलका है बे गाल गए नाख गए अपन बारह छोड़ के आ जावा, तो पशु जो को है वो बारह फिर तो है, या फिर आपने जो को बंदड़ो पशु है या फिर गरगज का पशु है बे बिन खाजे थैली समेत तो भी शुकी है क्या पशुओं का स्वास्थ्य जो को है वो खराब हो जाए। तो सहसु जरूरी बात तो आई है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले गया वहाँ तो बाजार से ले गया वहाँ या फिर कठे और दुकान से वहाँ गामू कठू ले गया वहाँ, तो आप थैलियाँ जिकी है प्लास्टिक वाली पोलीथीन वाली जिकी थैलियाँ हैं वहाँ से परहेज करना जरूरी है। बियाँ भी आपने जगह सियाणा मैंने बताया है कि जिकी थैलियाँ है एक कई हजारों सालों तक गड़े कौन नहीं माटे गए वहाँ, क्योंकि प्रकृति जिकी है बा आने नष्ट कौन कर सके नहीं, तो ये थैलियाँ इतनी ज़्यादा जहरीली मानस का आप अपने स्वास्थ्य के लिए अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अपनी माटी के लिए अपनी प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए। तो आप जद भी कोई बाजार से सामान सौदो लेके जावा लेने जावा तो भी सू पहला अपन किया कि या तो घर से कोई थैलो लेके जावा या फिर आप जगह जूट का है या फिर कोई कपड़ा का जगह थैला है बा में ही आप सामान सौदो जो को है वो घाल के ले गया वहाँ, ताकि भुला चुके हम अगर आप कोई सामान सौदो घाल के रख देवा कटिए पशु अगर भी मैं मुंह मार लिया तो वो नुकसान भी कौन करे नहीं है ना, क्योंकि पोलीथीन जी की थैलियाँ हैं बंग मुंह बांध के अरबिंग में कोई छिलका है या फिर कोई खाण पीन वाली जी की चीज़ें हैं बे आप बारह नाक दे और पशु जो है वो बिना समेत थैली खा जाए तो वो पेट में जाए बाद का माँ गुण करने के बजाय नुकसान करना शुरू कर दिया। जैन जी वो सड़े हड़को फुड़को करके तो भी शुक्रिया कि पशु के पेट का माँ गैस बढ़नी शुरू हो जाए पशु का आफ रहना शुरू हो जाए। कई बार देखे गए नहीं आप पशु जो है वो इसी चीज़ खा जाए और बीच पशु को आफ रो आ जाए और पशु के बार मरणासन की अवस्था है बिंग माँ आ जाए, तो आप ज़्यादा लापरवाही करांगा तो अपना पशुओं के लिए बड़ी खतरनाक है और आप पशु ने बचाना जरूरी है और बचावांगा जद का जद आप ये की छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखांगा। बियां देखा नहीं तो आपने जो पशु है वो कौन खावा नहीं कई बार, लेकिन बिंग में अगर खाद्य जी की चीज़ें हैं खान पान वाली अगर चीज़ अगर गाल गया अगर आप पशु का अगर रखांगा या फिर बारह नाखांगा गली में नाखांगा तो पशु जो है वो बिंग लालच का वहाँ समेत थैली खावा है, तो जद भी आप कोई कचरो है तो बिना थैली का वहाँ नह नाक गया आप कोई बढ़िया कोई बारह ईशो भांडो बनावा बिंग में आप रेट दें ताकि आंता जानता जगह पशु है बिन खास का या फिर पशुओं का ठाणगा में आप खुला गा वो कचरो है जो को ना खां ताकि पशु भी ना बढ़िया तरीका से खा ले। थैली को जो को प्रयोग है वो कम से कम अपन करना चाहिए। बियाँ भी आपने जो की सरकार है बे चीज़ पर पाबंदी लगा रखी है कि थैलियाँ जो की है प्लास्टिक की बंगो कम से कम इस्तेमाल करो बंग माँ क्या है कि इसी गैसा होवे कई इसी जो की चीज़ें आप ले गए आ जावा जो कि बिंग सगे क्या है प्रतिक्रिया कर जाए और बे प्रतिक्रिया करी चीज़ें अगर आप खास हैं या फिर आपने जो पशुधन खासी अपना जगह टाबर है बे खासी बियाँ देखा तो मिनख जात के लिए कोई भी खावे तो नुकसान ही है इन चीज़ को और पशुओं का जो को स्वास्थ्य है बिंगो जो को आहार नाल देखा नहीं तो पशु का आहार नाल में भी कई बार जी थैलियाँ फंस जाए आंतड़ा में जाके थैलियाँ जी फंस जाए पेट का माँ कई बार इकट्ठी हो जाए तो भी शुक्रिया का पशु जो है वहाँ बंद पड़ने की बड़ी संभावना हो जाए, तो ये जगह कारण है नहीं ये अपनी लापरवाही से ही हुआ और बाद का फिर डाकदरा कन भाजना पड़ा फिर पीछे टक्का भी लगा पशु की जान पर भी आ जाए आपने भी भाजा दौड़ हो जाए पगतौड़ी करनी पड़े, तो फिर थैलियाँ जी है भी बहुत बड़ी खतरनाक है और आपने इसमें परहेज करना चाहिए। और इंग सागे सागे की है कि आप जद भी कोई सामान लेवा और बिंग जगह छिलका है बे थैलियाँ में गाल गए और कई दिन तक पड़ी रहे और बियों बाद में भी अगर आप बना कराएं तो वो भी बड़ो खतरनाक है। थैलियाँ में हवा जकी है बा आदान प्रदान हुआ कोनी नहीं और बीशू क्या वो सड़ांद ले जाए और एक त्रिया शू जहर बन जाए, तो बाज की चीज़ है बा भी अपन पशुओं ने बारह गली में नहीं नाखनी चाहिए है अपनी घर की जकी माताओं बहन है नहीं बे क्या कह ज़्यादा खिचल कौन करे नहीं चीज़ का माँ क्या कह थैली का माँ घाल लिया और बिंग मुँह बांध के अर कटी कूंट का माँ रख दिया बीहू बाद में कभी याद आवे का आप इन करे बार ले जाके फेंक देवा तो वो क्या पशु बारह कई बार आवारा जगह पशु है सुना पशु है बेबी खा जाए अपना जगह घरेलू बंधेल पशु है बेबी खा जाए तो बहुत बड़ो नुकसान है ऐसा इन चीज़ को। और इनके अलावा आप ध्यान रखना वो जरूरी है कि प्रकृति ने बचानी जरूरी है और प्रकृति जो की है बात हम ध्यान है कि अपने जीवन से जुड़ेड़ी है अपने स्वास्थ्य से जुड़ेड़ी है अपने खान पान से जुड़ेड़ी है तो प्रकृति बचेगी तो आप बचांगा और प्रकृति का माँ जो जीव जंतु है बने भी बचाना जरूरी है। खाद्यान्न के प्रति की एक अपन पूरा ध्यान रखना है पशु ने कोई भी आहार देवा नहीं तो बिंग माँ की है कि प्लास्टिक की जो की कोई चीज़ है या फिर कोई छोटो मोटो टुकड़ो है कोई गत्तो है तो वो अपन बारे निकाल के पैर फिर ही अपन पशु ने देना चाहिए है पशु जो कहे बे थैली खा जाए और खाने के बाद का माँ क्या है कि कई बार तो बा कंठा में कटी रह जाए या फिर कई बार आहार नाल में कटी रह जाए या फिर और पेट का माँ कटी जाके फंस जाए तो फिर बाद में क्या है कि पशु जो कहे मर भी जाए कई जगह ऐसा जगह आपने देखने आया है समाचार का पशु जो कहे बे थैलियाँ खा जाए और बाद का में पशु मर भी जाए जका पशु सुनना फिर है वहाँ पशुओं ने भी अपन बचाना जरूरी है बंगे लिए भी किया कि अपन थैलियाँ जी के बारे नहीं फेंकनी है और अपना जगह आसला पासला जगह भाई लोग अगर इसे काम करे तो बने भी अपन ने समझाना जरूरी है सा इन सागे सागे किए कि अपना घर से कोई थैला

0: करा। जूट का भी थैला आवे आजकल, और आजकल इसे थैला आला रहे जिसका अपने माटी का माँ अगर दब जाए तो भी गल भी जाए, या फिर थोड़ा बहुत पानी छू या फिर कोई और तरीका छू भी क्या क्या गल जाए, प्रकृति का अनुरूप भी चीज़ें बड़ी हुए। ये जकी कोरी प्लास्टिक जकी है बा क्या क्या गले को नहीं, तो बंग माँ चीज़ें खानी अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। चाहे अपना गर्म चीज़ बिंग माँ घाल के ले गया या फिर ठंडी चीज़ घाल के ले गया तो बड़ी नुकसानदायक है। और इनके अलावा भाई लोगों अपन क्या करना है कि अब गर्मी को जो को मौसम चलने ला रही है तो इन माँ क्या है कि पशुधन को बिया भी ख्याल रखना जरूरी है। पशु के बार गर्मी जी की अब दो चार दिन पहला भी लू शुरू होगी अपने ही क्षेत्र का माँ भी, और राजस्थान का माँ तो बिया लू चल रही है, लेकिन अपने ऐठा गंगानगर जिला का माँ क्या तापमान जो है वो सांगो पांगो बढ़ोतरी खा रही है। तो अब जगह पशुधन है बाना ई लू छू ई गर्मी छू बचाना जरूरी है। कई बार देखे कर पशु जगह है हम्फन ला जाए, जगह पशु बंधेल है बने टेम सर अपन की है कि ठंडी छिया में या फिर कोई इसी अपने छपरों बनाए है या फिर इसी कोई साड़ बनाई है जगह में बंद अपन जटे लू ना लगे। और पशु अगर हम्फन ला रहे है चरण ना ला रहे है या फिर पशु के मुंह में झाग आन ला रहे है तो अपन ने क्या डॉक्टर जी दिखाना जरूरी है। और टेम टेम पर अपन ने की है कि पशु ने ताजो पानी पिया करा ताकि पशु जो को है बिंगू जो तापक्रम डील हुए वो बढ़िया बनी रहे। पशु ने किया है कि अपन दोनों टाइम पानी पियाना जरूरी है, और वो भी पानी जो को है बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए। आपने किया है कि घर का आसा पास अगर कोई होज बनाई है डिग्गी बनाई है या फिर कोई शो खेड़ बनाई है बिंग में पानी जो को काफ़ी दिनों तक पड़ रहा है बिंग में कीड़ा भी पैदा हो जाए आप देखे करा, और वो अगर पशुओं ने प्यासा तो बीचों भी पशु बीमार हो सके। थैलियों के सागे सागे किया है कि अपन बिंग खान पान के सागे सागे अपन बिंग पानी को भी पूरा ध्यान रखना है। आहार अगर आप सही देखें तो अपना जो पशुधन है वो बढ़िया और बेहतर बने रहेगा, और पानी जो को है वो सुबह शाम पियाओ। जब पशु तावड़ा बंद रहे है काफी टाइम तक तो बिन एकदम चाणचक ही पानी नहीं पियाना सब भी, क्योंकि पशु ने गर्म सर्द होने की भी संभावना ज्यादा रहे, पशु बीमार भी हो सके। और इनके अलावा अब क्या है कि जट्ठा अपनी पशुशाला है जट्ठा बाड़ो है बट्ठे भी अपन किया कि अब कीड़ा है या फिर जगह चिंचड़ है या फिर गोयड़ जगह है पशुओं की जगह जुआ है बंगो भी अपन निस्तारण जो है उपाय जो है वो करना जरूरी है। टाइम टाइम पर जब भी अपना अपने जटा पशुशाला है बैठा जावा तो अपन थोड़ा सा जांच पर कर लेना है कि जटा पशु खड़े है बैठा कीचड़ नहीं होना चाहिए, जटा मच्छर भी नहीं होना चाहिए। अगर पशुओं का आस पास कोई लगड़ है चिंचड़ है या फिर गोड़ लगड़ है तो बाने भी अपन उतार के फेंकना चाहिए ताकि पशु जो को है वो बीमार ना हो। कई बार पशु जो है वो अगर ना ध्यान दें तो कमजोर भी हो जाए, जगह दुधारू पशु है वे दूध भी कम कर दे। तो आप बातों को पूरा ध्यान रखिए आप बढ़िया तरीके से पशुपालन करना जरूरी है सा। और जगह छोटा बछड़िया है बंगो भी गर्मी गमा इन लू गमा अपने खान पान का सागे सागे बंगा स्वास्थ्य को पूरा ध्यान रखना है। और जट्ठे भी अपना पशु बांधा बट्ठे के का हवा को जो आदान प्रदान हल्को फुल्को होना जरूरी है। अगर लागे कि पशु जो है वो चाण चुको ही थोड़ा बहुत बीमारी का लक्षण दिखा है तो आपने किया है डॉक्टर जी संपर्क करना जरूरी है सा। तो आप आतंक पूरा ध्यान रखियो अपना भू खेत का नहीं चलू। राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें अजानकारी का विषय था पॉलीथीन घातक है पशुधन के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में पूजा, आरती और प्रार्थना सभा

0: घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। नेत्रदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से नेत्रदान का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नेत्रदान का निर्णय किसी की अंधेरी दुनिया में नई रोशनी और नई उम्मीद बन सकता है। नेत्रदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आम लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक वाहन चलाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष यातायात और कानून पालन अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के 8वें दिन कल करीब 8,500 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि इस दौरान वाहनों पर काली फिल्म लगाने, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों तथा बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रखरखाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कई उपाय शुरू किए हैं। इसके तहत NHAI ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों के मशीनों के जरिए रखरखाव और साफ सफाई तथा स्वचालित गड्ढा भरने के लिए उपकरणों की तैनाती के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रदेश में कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से 14 जून तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच आज तेज गर्मी से हाल बेहाल हैं। पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। कल कई सीमावर्ती इलाकों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा, अपने लिए हूं। मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से। बहनों, अच्छाई का कोई पैमाना नहीं होता कि कौन कितना अच्छा है। बस अच्छा है तो है। अक्सर हम दूसरों की अच्छाइयों का आकलन करने लगते हैं, लेकिन स्वयं को देखना भूल जाते हैं कि क्या हम स्वयं एक अच्छे इंसान हैं। अब भला पता कैसे चले कि क्या ऐसा करें कि हम अच्छे नागरिक बन पाएं?

मैनू अच्छे नागरिक के गुण समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कानून और अधिकार का सम्मान। बातें लगातार आगे और करेंगे, बहुत सारी लंबी लंबी जानकारियाँ और खुश कर देंगे सुहाने गीतों के साथ आपको, लेकिन उससे पहले अपनी रेडियो सखी रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कर लें। आज हम बात कर रहे हैं एक उत्तम नागरिक की और उसके कर्तव्यों की, कि कैसे एक उत्तम नागरिक की, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान हो सकती है, या वह कैसे होते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये एक अच्छा नागरिक है, एक सामाजिक प्राणी है। अच्छे नागरिक जानते हैं कि नियम सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अच्छे नागरिक समाज से जुड़कर उसकी उन्नति की बात सोचते हैं बहनों। वे समझते हैं कि सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए और समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आदर्श नागरिक हमारे समाज के आधार और शोभा होते हैं, उनमें एक नहीं अनेक गुण होते हैं, इसलिए उनका जीवन सादा और विचार उच्च होते हैं। कई लोग उन पर गर्व करते हैं। बहनों, जीवन में अच्छाई को अपनाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि जहां अहित हो रहा है वहां प्रतिकार जरूर करें, लेकिन एक अच्छे इंसान बनकर समाज की उन्नति के लिए सोचें, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, और अंतिम यात्रा हमारी कंप्लीट हो जानी है।

मेरे वो कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। जो देता है, जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। मैंने इसलिए कहते हैं ना कि जो भी कर्म करें, अच्छे करें, ताकि लोग हमें याद करें। और अच्छे कर्मों के लिए सच मानिए हमेशा व्यक्ति को याद किया जाता है। याद बुरा व्यक्ति भी रहता है, लेकिन उसकी बुराइयां किसी के काम नहीं आती, बस एक छवि उसकी बन के रह जाती है। इसलिए हमें एक अच्छे इंसान बन के देश में एक उदाहरण स्थापित करना है। एक समाज, एक देश में सभी प्रकार के नागरिक होते हैं बहनों, लेकिन अच्छे बहुत अच्छे और बुरे बहुत बुरे भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छे और आदर्श नागरिक देश को शक्ति संपन्न, समृद्ध, सुखी, शांत और संगठित बनाते हैं, और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी दृष्टियों से इनका जो है महत्व बड़ा होता है। जितने अच्छे लोग, उतने ही देश की तरक्की और देश भाग्यशाली होता है। एक आदर्श व्यक्ति के मन में देश के लिए अटूट प्रेम, गहरा लगाव और समर्पण का भाव होता है। वहीं कुछ लोग देशद्रोही और धोखेबाज होते हैं, इसलिए उनकी बात ज्यादा लंबी करना कोई जरूरी नहीं है बहनों। हाँ, अच्छे लोगों के लिए जितना अच्छा कहा जाए, जितना उनके बारे में कहा जाए, अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि वो देश हित की बात करते हैं। अच्छे नागरिक हमेशा कानून का पालन करते हैं, वे कानून को हाथ में नहीं लेते, शिक्षित और जागरूक रहते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, दूसरों के हित में काम करते हैं, गुप्त मतदान के माध्यम से लोकतंत्र में सहभागी बनते हैं, और तो और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना, पेड़ लगाना और सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, यही तो पहचान है एक अच्छे नागरिक की। अच्छे लोग हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वे बहन वो किसी तरह से सांप्रदायिक दुर्भावना

के चक्कर में नहीं पड़ते, भाईचारे को बनाए रखते हैं। वे यही तो किसी ने सच कहा है ना कि आदमी जो कहता है वही सुनता है। लेकिन हमेशा एक बात का प्रयास करें, एक कोशिश रहे कि अच्छाई को चुने, बुराई को त्यागें।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मैनू हम बात कर रहे थे एक अच्छे नागरिक की, और अच्छे नागरिक की एक पहचान और भी है, उसकी वेशभूषा, कि किस तरह से वो अपने आप को वेल मैनेज करके रखता है। और वेशभूषा की बात आती है तो बात कर लेते हैं खादी और खादी से बने वस्त्रों की। मैनू खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये भारत की विरासत स्थिरता का प्रतीक है। खादी हाथ से काता बुना हुआ कपड़ा भारत के दिल में एक खास जगह रखता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे एक नया रूप मिला, जब महात्मा गांधी ने लोगों को ब्रिटिश निर्मित कपड़े खरीदने के बजाय खुद कपड़े बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सरल कार्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने वाला साबित हुआ बहनों, और विदेशियों का विरोध होने लगा। आज खादी आधुनिक फैशन में भी वापसी कर रही है। कई ब्रांड इसे पारंपरिक कपड़े को एक नया रूप दे रहे हैं, जिससे दुनिया भर के कपड़ा प्रेमियों का ध्यान जो है आकर्षित हो रहा है। सबसे पहले अंबारा चरखे की मदद से सूत को हाथ से काटा जाता था, फिर कुशल कारीगर हथकरघे पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए खूबसूरत कपड़े बनाने लगे। मैंने खादी की खासियत जो है ना, वो उसकी अनूठी बनावट में है। बस यही हमें पता है, आगे और चर्चा करते हैं।

तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। जुबां पे आज दिल की बात आ गई बहनों। उफ, ये गर्मी, और इस गर्मी में कोई और कपड़ा भला कहाँ अच्छा लगता है। खादी के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सूती कपड़े पहनते हैं तो जुबां से निकल ही जाता है कि तुमसे

बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहनों, आज भी मशीन से बने कपड़ों के बजाय खादी का हर टुकड़ा अपनी एक कहानी कहता है। खादी बनाने वाले कारीगर असल में सच्चे कलाकार हैं बहनों। इनमें से कई लोगों ने तो पीढ़ियों से हुनर सीखा है और इस खूबसूरत परंपरा को जिंदा रखा हुआ है आज तक। जब हम खादी पहनते हो ना, तो हम केवल एक कपड़ा नहीं पहनते होते, हम किसी के जुनून और उसके हुनर को पहन रहे होते हैं। आजकल फैशन में भी खादी का बोलबाला है। रोजमर्रा के कैजुअल कपड़ों से लेकर ग्लैमरस रेड कारपेट लुक्स तक डिजाइनर दिखा रहे हैं कि ये कपड़ा कितना बहुमुखी हो सकता है। मैंने खादी सबसे अच्छी विशेषताओं में से खादी की जो सबसे अच्छी विशेषताएं हैं उनमें से एक खास है, वो है इससे पहनना कितना आरामदायक होता है। इसके प्राकृतिक रेशे त्वचा को सांस लेने में मदद करते हैं, जो गर्मियों या इस उमस भरे मौसम के लिए एकदम सही है। कई लोगों की खादी पहली पसंद बन चुकी है। सिंथेटिक कपड़ों के विपरीत खादी आपको पूरे दिन तरोताजा और आरामदायक रख सकती है। और व्यक्ति आनंद की अवस्था में होता है तो वह हर परिस्थिति का लुत्फ लेता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: बहनों, आइए अब अपने नौ निहालों की बात करते हैं। सब कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बहनों, बच्चे केवल भगवान को ही नहीं, घर में रहने वाले सभी बड़ों को भी बच्चों पर स्नेह आता है और उसकी छोटी छोटी जो हरकतें होती है ना, मानो सारे ढेर सारे सुख लौटा देते हैं। सारी कायनात का जो सुख है ना, ये बच्चों की चंचलता पर ही बसे हुए हैं। ऐसा जो वो छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो बस दुनिया की सारी खुशियां उन पे लौटा दी। उनकी शरारतों से पूरा घर महकता रहता है, लेकिन जब वो रोता है तो मानो पूरी दुनिया में तूफान आ गया हो। कई बार क्या होता है कि वो अपनी तोतली जुबान से कुछ कहना चाहता है तो घर के सारे सदस्य बस उसी को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो, मानो पता नहीं क्या ही बात कहने वाला हो। और शायद पेरेंट्स की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो दिन भर नखरे दिखाता या दिखाती है। बहनों, पहले के ज़माने में घर में ना 5-7 बच्चे होते थे जो ग्रुप में बैठकर मजे से खाना खा लेते थे। बड़ा छोटे को देख के, छोटा बड़े को देख के, देखो देखो पहले कौन खाएगा, मम्मी ने ये

दिया है, तुम खाओगे या मैं खाऊंगा, नहीं, पहले तो मैं ही खाऊंगा, कुछ इस तरह की बहस बहस में वो लोग अपना पेट भर लेते थे। और माँ बाप भी कोई बहुत बड़ा अटेंशन नहीं देते थे, हाँ बस खाना समय पे खिलाना है, उनको क्या पौष्टिक देना है ये सब ध्यान रखना होता था। बड़े भाई बहन जो है वो छोटों का ध्यान रखते थे, खाना खिलाकर पेट भर देते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, उफ क्या भाई नखरे हैं इनके, और जरा सी जब नाराज हो जाते हैं ना तो हम भी उन्हें देख नहीं पाते।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक अंतस का उजास सुनिए 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे।
3: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
4: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं चोर हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ।
2: याद रखें 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे सुने नाटक अंतस का उजास।
5: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
6: गलतियों का एहसास
2: सुनना ना भूलें। आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे नाटक अंतस का उजास।
7: नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। बस यही तो हमारे मन की बात है जो बच्चे हमसे पहले पढ़ लेते हैं और बस उसी भावनाओं का जो है वो फायदा उठाते हैं। हर छोटी सी चीज को लेकर नखरे दिखाते हैं और खासकर जब खाना खाते हैं तब। खाना खिलाते वक्त बच्चा मुंह बंद कर लेता है, जबरदस्ती खाना खिलाओ तो बच्चा रोने लगता है। मैंने बच्चा अगर खाना खाने से कतरा रहा है तो सबसे पहले उसे अलग अलग तरह के भोजन बनाकर दें, उसका टेस्ट जानने की कोशिश करें कि वो क्या खाना चाह रहा है। कुछ देर के लिए उसको फॉलो करें, देखें कि वो मीठा खा रहा है, कड़वा खा रहा है या नमकीन खा रहा है, कैसा खाना पसंद करता है, उसके स्वाद के अनुसार उसे क्या अच्छा या बुरा लग रहा है उसके टेस्ट के मुताबिक उसको खाना दें। खाना खिलाते समय खिलौने जो उसे पसंद हो उसके पास रखें ताकि खेल खेल में वो भोजन कर ले। हमें पता है बच्चे का पेट भर गया तो ज़्यादा के लिए जिद ना करें, क्योंकि ओवर डाइट भी बच्चों को कई बार चिड़चिड़ा कर देती है। हमें लगता है नहीं ये तो खाना ही चाहिए, इतना तो खाना है, कई बार बच्चे का पेट भर जाता है तो जिद ना करें। और बड़े होने पर स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है बहनों आपकी ये जिद कभी पूरी ना करें बच्चे की। कई बार प्रेमवश बच्चे की जिद को जो पेरेंट्स हैं ना घुटने टेक देते हैं, खाना खिलाने की बजाय कुछ अनहेल्दी खाने की जिद मान लेते हैं, मगर इससे बच्चे को और ज़्यादा नुकसान होता है और ज़िद्दी ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा कड़ा रुख अपना कर खाना खिलाएं, क्योंकि ये उसके सुनहरे भविष्य की नींव ही तो है बहनों। खाना खिलाकर उसे कुछ देर प्यार से सहलाएं, जिसे उसे लगे कि उसने बहुत ही बड़ा काम किया हो।

चलिए अब बात करते हैं सेहत की। अगर आप ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हैं जो नेचुरल हो, साइड इफेक्ट से दूर हो और आपकी जेब में फिट हो, तो मुल्तानी मिट्टी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये तो हमारी दादी नानी का आजमाया हुआ पुराना नुस्खा है बहनों, जो आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले के समय में होता था। याद है जब हम गर्मी की छुट्टियों में पूरा दिन धूप में खेलने के बाद हमारा जब चेहरा काला हो जाता था ना, या फिर स्किन चिपचिपी हो जाती थी, तब नानी एकदम से रसोई से ना मुल्तानी मिट्टी निकाल कर लाती थी। कभी उसमें गुलाब जल मिलाया जाता था, कभी दही और हल्दी सी हल्की सी हल्दी, और बनता था एक ठंडा ठंडा फेस पैक जो चेहरे की सारी थकान, गंदगी और ऑयल सोख लेता था। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक घरेलू जादू है, जादू जो स्किन को साफ करने से लेकर पिंपल्स कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने का काम करती है। इसे चेहरे पर लगाने से ठंडक महसूस होती है बहनों, जो स्किन को रिलैक्स करती है, पोर्स खोलने में मदद करती है और स्किन की ऊपरी परत से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को हटाकर स्किन को डीपली क्लीन करती है।

बहनों बिल्कुल, दिल हमेशा आपके लिए पुकार करता है कि किसी ना किसी बहाने से आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपका जो स्नेह है, आपका प्यार है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमें बताना न भूलें कि कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो सखी रजनी मोदी को दे आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

0: प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स

0: में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिस से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा, इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई

0: अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज। एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का ये गीत।

आइए श्रोता अब सुनते हैं मन चली। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं ये मधुर सा नगमा। फिल्म का नाम है मेरा साया, आवाज दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहदी अली खान ने इस गीत को लिखा और संगीत मदन मोहन का है।

आइए अब सुनते हैं खानदान, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत

फिल्म संगीति समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं एक और मधुर सा नगमा। फिल्म का नाम है दो रास्ते। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं छाया, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और सलील चौधरी का संगीत है।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। मरकजी काबीना ने अमरावती में अहमदाबाद मेट्रो और सरकारी दफातर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तोसी समेत 4,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का मंजूरी दे दी है। ईरान ने उर्दुन में अमेरिका के फौजी अड्डों और खलीज में दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। और फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा ने भारत में एआई पर मबनी अपना पहला डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर आज़म के अहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस अहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4,398 दिन का था, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने अहदे पर अब तक 4,399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क़यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वज़ीरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामानिगारों से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़्यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क़्यादत में 25 करोड़ कुनबों को गुर्बत से बाहर निकल लाया गया है। जनाब नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर

और जो मरकूज करते हुए माशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है। मरकजी काबिना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। काबिना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस करारदाद में वजीर आजम के मुसलसल मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुल्क की खिदमात जैसे तारीखी संग मील और अजम इरादों का खास तौर से जिक्र किया गया है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जनाब वैष्णव ने बताया कि काबीना ने आज 2,169 करोड़ रुपए के बजट के साथ अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A को तोसी देने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसमें 5 स्टेशनों के साथ 6 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। वजीर मौसूफ ने बताया कि जब फेज 2A काम करना शुरू कर देगा तो अहमदाबाद गांधीनगर में 77 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। उन्होंने कहा कि काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में मरकजी हुकूमत के दफ्तर कॉम्प्लेक्स और मरकजी हुकूमत के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मुल्क में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस PNG की सप्लाई का दायरा बढ़ा रही है और LPG कनेक्शन को PNG कनेक्शन में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। जनाब पुरी ने कहा कि कुछ लोग मसनू की किल्लत पैदा करके और गलत बातें फैलाकर मौजूदा आलमी सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि सरकार ने इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की है। दिफाई साजो सामान की खरीदारी, दिफा के शोबे में महारत के लिए इख्तराहत और MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए जांच के मराहिल से मुतालिक एक वर्कशॉप कल नई दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी। दिफाई इकोसिस्टम में MSMEs और स्टार्टअप्स की शमूलियत को बढ़ाने और उसके बारे में बेदारी पैदा करना इस तकरीब का मकसद है। वजारत दिफा ने बताया है कि इस प्रोग्राम के जरिए सनत के नुमाइंदों को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मराहिल, जाँच और सर्टिफिकेशन के अमल के बारे में जानकारी दी जाएगी। मरबूत दिफाई अमले के हेडक्वार्टर और दीगर शरीक तंजीमों के अफसरान और माहरीन मुख्तलिफ सेशंस के दौरान तबादला ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने आबनाए उरूज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खित्ते में उर्दुन में अमरीकी फौज के 1 ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए उर्मुज में बंदरगाही शहर सिरिक और कशम जजीरे पर हमला किया गया था। उधर उर्दुन की मुसल्ला अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया। उर्दुन की फौज ने कहा है कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के इलाके से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया गया। अमेरिका और ईरान की फोर्सेज ने रात में एक दूसरे पर फौजी हमले किए जिससे कशीदगी में इजाफा हो गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। अमेरिका की मरकजी कमान ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराए जाने के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर 9 जून को उसकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ अपने दिफाई हमले किए। एक दिन पहले ही आबनाए हुर्मुज़ के नज़दीक इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था। सदर ट्रंप ने कहा कि इसके हमले के दोनों अहलकार महफूज हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। अमेरिका की मरकजी कमान ने बताया कि अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और निगरानी राडार मराकज को निशाना बनाया। इंसानी हकूक के अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अवी तनजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुकाम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मस्कूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर यकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा है कि खित्ते में इंसानी हकूक की सूरत हाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। इन तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि 8 और 9 जून के दरमियान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों एक खातून समेत 25 से ज़्यादा लोग मारे गए। अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पाक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं जिनमें ज्यादातर

बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारियत की हरकत करार दिया। गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इस तनाजुर में आम शहरियों की अमवात पर तशवीश भी बढ़ती जा रही है।

0: और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इस तनाजुर में आम शहरियों की अमवात पर तशवीश भी बढ़ती जा रही है। फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा ने आज ऐलान किया है कि वो भारत में अपना पहला एआई से मुंसलिक डेटा सेंटर कायम करेगी। माहदे के तहत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट की सलाहियत के साथ एक डेटा सेंटर कायम करेंगे, जिसको मेटा कंपनी पट्टे पर लेगी। ये डेटा सेंटर मेटा के भारत के लिए आज़म की अक्कासी करता है और इसके ज़रिए आलमी पैमाने का बुनियादी ढांचा अपनी एआई सलाहियतों के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक डिजिटल बाजारों तक पहुँचेगा। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। मरकजी काबीना ने अमरावती में अहमदाबाद मेट्रो और सरकारी दफातर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तोसी समेत 4,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। ईरान ने उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों और खलीज में दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। अमरीका ने ईरान के ठिकानों पर हमले करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। और फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा ने भारत में एआई पर मबनी अपना पहला डेटा सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश बदतमीज़ फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमा निगार असद जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन।
2: ए भाई दर्द

और सामिन जब सुनिए सादा सरगम की आवाज़ में समीर का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया है नदीम शरवण ने। फिल्म है हम है राही प्यार के।

प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ों में जॉनी, मेरा नाम फिल्म का है नगमा। नगमा निगार, इंदीवर, मौसीकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: वहरा रक्स क्यों रुक गया? तुम लोग गर्दने झुकाए क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? कौन आप? मादरे सल्तनत?
1: ये मादरे सल्तनत की पहली और आखिरी गलती है सलीम।
0: इतनी रात गए आपके कदम और हमारे इश्रत का दिन तक मेरी खता मादरे सल्तनत।
1: हमारे साथ चलो सलीम, अभी इसी वक्त।
0: इस वक्त?
1: हाँ हाँ इसी घड़ी।
0: लेकिन
1: सलीम
0: जो हुक्म मादरे का,

शहर सवार, तुमने उसे मार डाला।

0: जाग जाएगी तो सारा हिंदुस्तान जाग जाएगा। रियाया कहेगी कि एक बेवा की ख्वाबगाह में एक नामहरम को पहुंचाने की साजिश में अकबर की मलिका भी शामिल थी।
1: आप मुझे यहां क्यों लाई हैं?
0: हर रात यही होता है, वो यूं सोती है जैसे अंगारों पर लौट रही हो। मैं सब कुछ सुनती हूँ, अकेले सुनती हूँ। आज न जाने क्यों दिल ने अकेले इस असियत को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। सोचा कोई साथी हो सो तुझे ले आई।
1: मादरे सल्तनत,
2: जश्ने नौरोज गुले मुराद।
1: इसने कुछ कहा है मादरे करामी? अभी अभी इसने कुछ कहा है? गुले मुराद, गुले मुराद।

0: खूबसूरत बाग है शहजादे आलम।
1: मेहरुन्निसा, तुम्हें फूलों की इतनी शनाख्त है?
0: क्यों नहीं, फूलों में जो रही हूँ।
1: अच्छा तो पहचानो जरा, बताओ इस बाग का सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है?
0: अभी लीजिए, ए वो रहा, वो मशरिक के सिमत दाने से तीसरी क्यारी में। हम तो ये भी बता दें कि ये सुर्ख गुलाब रात के कौन से पहर में खिला होगा।
1: मेहरुन्निसा, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम, जानती हो हमने इस फूल का क्या नाम रखा है? गुल मुराद।
0: गुल मुराद, जरा हम भी तो देखें।
1: लो तुम भी देखो, बखुदा देखती ही रह जाओगी।
0: ये क्या, ये तो हुजूर की अंगुष्ठी मुबारक की आरसी है जुल्लेला ही।
1: देखो तो इस आरसी में छाक कर, इसी में है हमारा गुल मुराद।
0: क्या देखूं, ये तो आईना है, ये तो मैं हूँ, ये तो जाइए, हम नहीं बोलते।
1: हमने कब कहा कि फूल बोलते हैं? इनकी शगुफ्तगी और महक तो बस मिशा में जामे बसती ही चली जाती है। बखुदा मेहरुन्निसा, खुशबू अपने सफर में और भी हसीन हो जाती है। इधर देखो, शहजादों की तरफ पीठ करना बेअदबी है। मेहरुन्निसा, हमारे करीब आओ, नहीं आओगी? अच्छा, हम खुद आ रहे हैं। तुम रो रही हो क्या? क्या हमारी कोई बात?
0: बात वही खान सल्तनत ने महाबली तक पहुंचा दी है, मशवरे हो रहे हैं शहजादी। कोई कहता है नामों से शहनशाही का सवाल है, किसी को खदशा है कि शहजादा सुस्ती और निकम्मी जिंदगी से हमकिनार है। अपने चमनजार में कोई ऐसा फूल न लगाइए शहजादे कि जिसके टूटने से आपका दिल टूट जाए। ऐसा न कीजिए मेरे आका, इतनी बड़ी मुमलिकत का एक एक फर्द, एक एक जर्रा मुझसे हिसाब मांगेगा। एक सादा लोग कनीस को इतने बड़े नरगे में ना डालिए। ये कुल मुराद खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा मेरे आका।
1: नामुमकिन है।
2: धीरे बोल मेरे बेटे, वो जाग जाएगी।
1: क्या मैंने कुछ कहा? ओह माफ कीजिए मादर करामी, हम कुछ देर के लिए शायद अपने मासी में भटक गए थे।
2: मेरी एक बात मान ले मेरे बेटे, तू बादशाह है, सबका पालनहार। शौहर की मौत के बाद

0: इसके रूह घायल हो चुकी है, इसके दिल को ढारस थी मेरे बेटे।
1: लेकिन मैं क्या करूं रानी माँ, कैसे करूं?
0: तुझे मेरू निशा से मिलना होगा
1: रानी माँ।
0: हम इस मुलाकात का इंतजाम खुद कराएंगे।
1: लेकिन माँ तेरे गरामी वो इद्दत के दिन गुजार रही है, और फिर शरण भी वो एक नामहरम के सामने।
0: गुफ्तगू के लिए बेपर्दगी कोई जरूरी तो नहीं, हम इसका भी इंतजाम कर लेंगे।

0: तू किस इब्तिदा की बात कर रही है बेटी? तेरी बेवकी को आज 2 साल का अरसा गुजरा है। हमने तो तुझे आज से 15 साल पहले अपनी सल्तनत के अनमोल हीरे के सुपुर्द किया था। इन्हीं महलों से आजहानी ने किस शान से तेरा डोला उठाया था, तेरे मुकद्दर को 4 चांद लगाए थे।
1: मुकद्दर, मादरे सल्तनत, गुलामों का मुकद्दर कभी कुछ हुआ है?
0: ना शुक्री ना कर मेहरुनिसा।
1: आज से 17 बरस पहले मैं किसी शहजादे का गुल मुराद थी। मैंने उस शहजादे को बहुत समझाया, पस्तियों को यूं बुलंदियों पर ना पहुंचाइए शहजादे आलम। उसने कहा, नहीं, ये तो गुलामों का मुकद्दर है। मैं चुपचाप उस जहर को पी गई और फिर एक दिन महाबली का हुक्म हुआ।
2: मेहरुन्निसा,
1: मैं
2: सच
1: खामोश
2: रही, जब हम तुम्हारे खामोश हो रहे थे, मचा था
1: मानिन
2: मेहरुन को मुस्कुम्बर से नहला दो,
1: राजी
2: अतलब कमखा बुला लो, जवाहर से इतना सजाओ कि खजाने शर्मा जाए।
1: और इस तरह एक कठपुतली को उंगली के जरा से इशारे पर बेदखल कर दिया गया। यहाँ की मुरादों का फूल वहां के गले का हार बन गया। शीशे के घर में रहने वाला कंकरी फेंकता भी तो कैसे? मेरा तो मुकद्दर बनाना था उसे, कैसे कह देता कि मेहरुन्निसा मेरी है, ये गुल मुराद मेरा है, महाबली इसे यूं न रौंदिए। और फिर सन 1605 आ गया, तख्त नशीनी की तारीख। अब शीशे का घर फौलाद में तब्दील हो चुका था। कुल 2 ही बरस गुजरे थे कि उसे फिर हमारे मुकद्दर का ख्याल आया। देखिए ना मादरे सल्तनत, क्या मुकद्दर बना है मेरा। मेरे कलाइयों की चूड़ियां छिन गई, मेरी बच्ची यतीम हो गई, मुझे मुझे महल अब क्या मांग रहे हैं मुझसे, क्या मांग रहे हैं?
0: सब्र कर मेरी बच्ची, माना कि सलीम मेरी कोख से नहीं जन्मा, तू भी तो मेरी कोई नहीं है, लेकिन दोनों का गम मेरे लिए एक जैसा है। दिलों में गुबार रखना कुफर है। बादशाह तुझसे मिलना चाहता है, उसे अपनी बात कहने का मौका दे। तू अब तक आजाद रही है, आइंदा भी आजाद रहेगी, इनकार ना करना मेहरुन्निसा।
1: जो मादरे सल्तनत।
3: आलीजा शाही हरम की मेहमान खुसूसी बिनते गयास बे अलमरू बा मेहरुन्निसा बेगम खिदमत अकदस में इशाद फरमाती हैं कि
4: कनीजा, हमने सुन लिया है। हमारी तरफ से बेवए शेर अफगन से बस इतना पूछ लो कि क्या दौलत सराय सुल्तानी काबिल एतमाद न रही? क्या खानदान मुखलिया के बादशाह वक्त से कोई बेअदबी सरजद हुई है? हमने समझा था कि हमारा मेजबान हमें तखलीक के चंद लम्हे फराहम करने में पसो पेश न करेगा।
3: कनीजा, लॉन्डी तखलीक के हुक्म के लिए मुंतजर है। तखलीक,
4: ठहरो कनीज, हमारे मेजबान से कह दो कि बादशाहों को रहम मरकूब नहीं, गज कुलाही उनका शेवा है, उन्हें कुछ दो तो बागपन के साथ।

0: उनसे मांगू तो बागपन के साथ। हम जा रहे हैं।
1: आलिया ठहर जाइए, जिल्ले इलाही आपको हमारे सर की कसम, ठहर जाइए।
0: बहरुन्निसा
1: कनीजा, हमारे हुक्म की तामील की जाए।
2: जो हुक्म सरकार आली।
1: क्यों आए थे आप, क्यों जा रहे थे, हम पूछते हैं क्यों रुक गए आप?
0: हमारे मेजबान ने हमें अपने सर की कसम देकर शायद बाबा जंजीर कर दिया है।
1: कौन सा सर?
0: जो कभी हमारे जानों पर भी रहा है।
1: बादशाह, हम तो इतना जानते हैं कि रियाया के सर शाहों के जानों पर नहीं, नेजों पर जगह पाते हैं। सबने देखा था वो सर जिसे मैंने कुरान पाक के पारे की तरह मुअज्जिज़ो मोहतरम जाना, उसी सर को नेजे पर चढ़ा सबने देखा था। नसीबे दुश्मना, क्या आपने नहीं देखा?
0: ये तो अपनी अपनी तलाश और जुस्तजू है मेहरुन्निसा। शेर अफगन के पास सर थे लेकिन शायद उसे नेजों की तलाश थी, हमारे पास नेजे थे और हमें सरों की जुस्तजू। हम नहीं जानते कि यह हमारी कम नसीबियां हैं या तारीख की मजबूरियां, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि रूह का जो दर्द हमने उस रात महसूस किया था, उस रात महसूस किया।
3: फरमा रवाए सल्तनत, अभी अभी गुमाश्ता खबर लाया है कि बर्दवान का जागीरदार शेर अफगन।
0: खामोश क्यों हो गए अफसल बेग, क्या हुआ हमारे शेर अफगन को?
3: आलिजा, सूबेदार बंगाला कुतुबुद्दीन जिल्ल सुभानी के इरशाद पर शेर अफगन से बंगाल में पठानों की बगावत के असबाब दरियाफ्त करने गए थे। और
0: तो क्या शेर अफगन भी बगावत में शामिल है?
3: जिल्ल इलाही, बात शायद बहुत आगे बढ़ गई।
0: अफसल बेग, हमें इख्तसार पसंद है, क्या शेर अफगन ने हमारे हुजूर में पेश होने से इनकार कर दिया? जवाब दो।
3: शेर अफगन मारा गया आला हजरत।
0: अफसल बेग,
3: आली जा, साहिब किरान का नुमाइंदा कबल इसके कि शेर अफगन से बंगाल की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करता और जहां पनाह के हुजूर में तलबी का हुक्म सुनाता कि एक मनहूस घड़ी ने हालात बिगाड़ दिए। शेर अफगन को नुमाइंदा शाही की हरकत सकनात पर शुबा हुआ कि मुबादा जारहाना पेश कदमी न कर बैठे, उसने बिफर कर खंजर के एक वार से कुतुबुद्दीन का काम तमाम कर दिया। निगहबानान सल्तनत भी खामोश न रह सके। और
0: या खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? काश वक्त का बेरहम तमाचा पढ़ने से पहले हम बादशाह न रहते। लोग कहेंगे कि जहांगीर शेर अफगन की मौत सियासत नवाजी नहीं, कत्ले अम्द है। रियाया हमें सिफला कहेगी, उमरा हमें हवस परस्त समझेंगे, और शेर अफगन का हरम नहीं, बाखुदा शेर अफगन हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर।
1: आला हजरत, कोई किसी की रूह में झांक कर नहीं देख सकता, न जाने आप किस रात की बात कर रहे हैं। हमारी जिंदगी की तो हर शब एक फोड़ा है जो न बहता है न बैठता है, एक तपकन है जो नीशे अकरब के मानिंद हमें छेदे डाल रही है।
0: अफसल बेग, तुम जा सकते हो।
1: अफसल बेग, आप किस अफसल बेग की बात कर रहे हैं? जहां बना इस पर्दे के पीछे हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं।
0: ओह मेहरुन्निसा, हम न जाने क्या सोचने लगे थे, शायद तुम हमसे कुछ कह रही।
1: खुदा न खास्ता, क्या दुश्मनों के मिजाज कुछ नासाज हैं या फिर हमारी सदा का मुकद्दर अब सदाए

0: चेहरा के अलावा और कुछ नहीं।
1: मेहरुलनिसा, काश हम तुम्हें बता सकते कि हमारा शहर दिल एक मदफन है, हमारी जन्नत निगाह पे रंग है।
0: बादशाह,
1: हमें इस मुखातबे में तौहीन महसूस होती है।
0: सिल्ले सुभानी,
1: ये लकब हम पर मानिंदे दुश्नाम है महरुन।
0: जहां पना आप।
1: ये झूठ है महरुन, ये झूठ है। हम किसी को पनाह नहीं दे सकते, हमने जिंदगियां ली हैं, दी नहीं। हमें अपने आप से डर लगने लगा है। हम बहुत देर से तुम्हारी मासूम बच्ची लाडली बेगम को नजराना शफकत के तौर पर एक हार पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन बाखुदा महरुन, हमारे हौसले छूटे जा रहे हैं। बार बार जैसे कोई हमारे कानों में चीख कर कहता है कि ये मत कर जहांगीर, दुनिया तेरी मासूमियत पर न जाएगी, लोग इसे शेर अफगन के खून बहा की पहली किस्त करार देंगे।
0: तिपले आलम,
1: सोते जागते चलते फिरते हम जहां पना है, क़िबला आलम है, जिल्ले इलाही है, लेकिन न जाने हमारा हम कहां खो गया है। महरुल्लिसा, रुखसत से पहले तुम्हारा बादशाह तुमसे एक गुजारिश करना चाहता है। अगर इन महलों में कहीं सलीम मिल जाए तो उससे कहना जा, तेरा बादशाह तेरे गम में जौलीदा मुंह है, सर बजानू है। खुदा हाफिज।

0: तीन बरस बीत चुके मेहरुन्निसा, आज से 3 साल पहले शाही महलों का दरवाजा तेरे लुटे हुए काफले के लिए वाह हुआ था। तूने ये सब क्यों कबूल किया? क्यों आई तू यहां? कहीं भी चली जाती, किसी भी मुमलिकत में, किसी भी सहरा में, कहां चली जाती? होनी को कौन टाल सकता है? तुझे वो जश्न नौरोज याद नहीं? तू तो उसी रोज बिक चुकी थी। आज तेरे सामने तेरा असल खरीदार आया है और तू नहीं, नहीं, मेरा कोई खरीदार नहीं, मैं बिकने की चीज भी नहीं। सच्चाइयां यूं नहीं छुपती पगली, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। तेरी सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी इस पहाड़ जैसी जिंदगी को? शायद तेरे खुदा को भी यही मंजूर था। जिंदगी सहारों पर कौन काटता है? जिंदगी तो एक अज़्म है, एक इरादा है। क्यों किसी का दिल तोड़ रही है नादान? तेरा दिल तो टूट ही चुका है। अगर तेरी खातिर किसी को जिंदगी मिलती है तो दे दे। किसका दिल टूट रहा है? कौन जिंदगी पा रहा है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सच है। कहते कि बादशाह के दिल में आज भी तेरी मोहब्बत जवान नहीं। कहते कि पिछले 3 साल से वो तेरे होठों से निकली हुई एक हाँ के लिए बेकरार नहीं। अब मैं ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहती। आज से 19 साल पहले जब मैं 14 बरस की थी, तब भी एक दीवाने रमाल ने मुझे ऐसा ही ख्वाब दिखाया था। लड़कियां मुझे खींच कर उसके पास ले गई थी। मुझे याद आ रहा है, मुझे मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है।
1: अरे हमने कहा खान, जरा इसका हाथ भी देख लीजिए ना
2: बिटिया, अब सूरज डूबने को है।

0: चार कोस मंजिल तय करके तब घर पहुंचूंगा, न घोड़ा न सवारी, अब जाने भी दो।
1: अरे वाह, ये भी कोई बात हुई।
2: अरे जल्दी करना, बड़ा अपनी हथेली मेहरून।
0: लगता है सारा महल आज ही अपनी किस्मत पूछ डालेगा।
2: अरे मेहरून जल्दी कर, ला इधर, ये लीजिए, ये रही हथेली।
0: हाथ तो बड़ा खूबसूरत है।
1: लो, ये तो हाथ ही देख कर रीझ गया।
0: ऐसी बात नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। ला बेटी, तेरा हाथ भी देख लूं। या मेरे खुदा, क्या लकीरें हैं, यकीन नहीं आता। बिटिया, इस बच्ची का क्या नाम है?
1: मेहरुन्निसा।
0: बाप का नाम?
1: मिर्जा गयास बेग।
0: सुभान तेरी कुदरत, वाह मेरे मालिक, किस्मत हो तो ऐसी।
1: अरे कुछ कहोगे भी बड़े मियां, या यूं ही उड़ाए जाओगे?
0: इस पर चतरशाही कुर्बान होता देख रहा हूं। बेटी मेरी बात याद रखना, एक दिन तू मलिका बनेगी, यकीनन तू मलिका बनेगी।
2: देख मेहरुन्निसा, याद कर वो अल्फाज। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है।
3: हुजूरे आलिया, आपकी खिदमत में हजरत शहंशाह जहांगीर का पैगाम है।
2: पैगाम? कैसा पैगाम?
3: बादशाह आज सुपहर मुलाकात के तालिब है।
2: नहीं नहीं, खबर भेजते कि हम अलील हैं, हम न मिल सकेंगे, हम न मिल सकेंगे।
3: जो हुक्म हुजूरे आलिया।
2: ये क्या कर रही है? रोक ले कनीजा को, रोक। कनीजा ठहर जा जरा।
3: जो हुक्म।
2: कहते हमें मंजूर है, कहते मेहरुन्निसा।
3: कनीजा कहते, कहते कि हमें मंजूर।

0: आज 4 साल होने को आ रहे हैं। हमारी कुदरत और हमारा इख्तियार दोनों शल हो चुके। हमने जो चाहा हासिल किया, लेकिन महरुलिसा, हम तुम्हें आमरियत से नहीं मोहब्बत से जीतेंगे। हम इंतजार करेंगे ताबत रहती दुनिया तक। महरुलिसा, हम तुम्हारी बेल्तफाती पर गमगीन नहीं। शायद हम ही अपने गुले मुराद की आबियारी में गोता अंदेश रहे। हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। कितनी लज्जत आंगी है ये सजा।
1: जहां पना कनीजा बारियाबी की इजाजत चाहती है।
0: खुशामदीद, हम मुंतजर हैं।
1: हुजूर आलिया मेहरुन्निसा बेगम ने फरमाया है कि आपकी तशरीफ आबरी बाई से इज्जत शरफ होगी।
0: कनीजा कोई है? कनीजा को जरूर जवाहर से मालामाल कर दिया जाए।

0: मादरे सल्तनत सरदार, शुक्र अदा कीजिए, ये लौंडी खुशखबरी लाई है।
1: खुदा तुझे इसका अजर दे। क्या खबर लाई है कनीजा?
0: मैं पर्दों की आड़ में सुन रही थी आज की मुलाकात के वो नर्म नर्म जुमले। आज पहली बार वो धीमे से मुस्कुराई भी थी, एक बार बादशाह के सामने पड़े हुए पर्दे को आंख भर के देखा भी था। सच मादरे सल्तनत, उन निकाहों में एक रोशनी सी थी, एक लगाव सा था। पहली बार मैंने बेगम साहिबा को यूं देखा है।
1: शुक्र है महबूद, लाख लाख शुक्र है।
0: बादशाह ने कल भी उनसे मुलाकात की इजाजत मांग ली है। कल मैं अपनी बेगम साहिबा को दुल्हन की तरह सजाऊंगी।

0: कनीता, तूने तो हमारे एक एक उज़्व को मोतियों से गूंद दिया है आज। अरे जी, ये क्या है? आज मत रोकिए हुजूरे आलिया, आज कनीजा को मनमानी करने की इजाजत दे दीजिए। गुलाबों का जूड़ा मुझे बालों में सवार लेने दीजिए। इतने जेवर, जैसे मुझे दुल्हन बना रही हो। हुजूर तो खुद एक जेवर है, मैंने अपनी आंखों को आज तक संवरे नहीं देखा।
1: निगार उबरू, खाकान इब्ने खाकान, सुल्तान इब्ने सुल्तान, ताजदार किश्वर हिंदुस्तान, बादशाह जहांगीर की सवारी, बाद बहारी की आमद आमद है। निगार उबरू।
0: आलीजा की सवारी आ गई हुजूर आलिया। ये पर्दे के राधे कनीजा, उन्हें बसत एहतराम अंदर ले आ।
2: मेहरुन्निसा,
0: बिललाही,
2: कब तक? बताओ कब तक?
0: मैं समझी नहीं जहां पना।
2: कब तक हमें इंतजार करना होगा?
0: किस बात का इंतजार आला हजरत?
2: हमारा कुल मुराद,
0: आपकी हर मुराद पूरी हो। आमीन।
2: मेहरुन्निसा, हम पर तरस खाओ।
0: तरस? आप बादशाह हैं, बादशाह किसी रहम के तालिब नहीं होते। उन्हें कुछ तो बांकपन के साथ, उनसे कुछ मांगो तो बांकपन के साथ। आप ही ने तो कहा था ज़िल्लेलाही।
2: मेहरुन्निसा,
0: क़िबले आलम,
2: तंस के इतने तीखे तीर ना चलाओ। अब हम पे सकत नहीं रही, हमें इजाजत दो कि हम इस तोई को ये कान की में तब्दील कर दें।
0: आप आका है, कौन रोक सकता है आपको? जिस पर्दे को चाहिए उठा दीजिए, जिसे चाहिए गिरा दीजिए।
2: नहीं मेहरुन्निसा, नहीं, ये हाकिम की महकूम से इल्तजा नहीं, आशिक के अपने महबूब से इल्तजा है।
0: मैं औरत हूँ जहाँ बना, मेरे हाथ पर्दा डालने के हैं, पर्दा उठाने के लिए नहीं।
2: तो फिर शौक को इजाजत दो कि नकाब कुशाई उसी का शेवा है।
0: शर्म दामन गिर है, लबों में जुम्बिश कैसे हो?
2: शर्म ना करो मेहरुन्निसा, खुदा के वास्ते हम पर तरस खाओ।
0: आलीजा,
2: हम मुंतजर हैं।
0: रियाया क्या कहेगी?
2: वही जो बादशाह कहेगा।
0: ये महल, ये दीवारें, ये क्या कहेंगे आलीजा?
2: एक एक जर्रा हमारा ताबे है मेहरुन्निसा, तुम हाँ करके तो देखो।
0: और अगर हम नहीं करते तो?
2: कहीं तो कायनात एक मुहिब तारीकी के सिवा कुछ न रहेगी। जहांगीर बर्बाद हो जाएगा, सल्तनत मुखलिया ताराज हो जाएगी। हम पर तरस खाओ मेहरुन।
0: तरस? और अपने जन जन से यही तो किया है क़िबले आलम, उसने मर्द से हमेशा ही उसका सारा बोझ मांग लिया है। औरत तरस खाकर सब कुछ दे सकती है, हक समझकर मांगने पर उसके दरबार से कभी कुछ नहीं मिलता। डाल दीजिए अपने सारे गम मेहरुन्निसा के आंचल में, पर्दे हटा दीजिए। क़िबले आलम, मेहरुन्निसा आपको इजाजत देती है।
2: मेहरुन्निसा, सुभान अल्लाह, वही शगुफ्त की, वही तास की वो रानाई, बाखुदा यही हमारा कुल मुराद है।
0: आलीजा,
2: देखो तो इस आरसी में झांक कर, इसी में है हमारा कुल मुराद।
0: क्या देखूं, ये तो आईना है, ये तो मैं हूँ, ये तो जाइए, हम नहीं बोलते।
2: मेहरुन्निसा।

और प्रभा मनचंदा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत हैं फिल्मी नगमे।

दर्दी तो मिटा के रख देंगे, ये बंगले

मिला जा तो चुल्लू भर पानी में डुब

प्यार किए जा, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: और सामने लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। मन्ना डे की आवाज में नीरज का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाए शंकर जयकिशन ने। फिल्म है मेरा नाम जोकर।
1: ए भाई,

time.

गया है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है

और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी आशिक, और अब सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, मुंशिकार हैं आर डी बर्मन।

बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया कर।

आग उठेगी, हो जाएगी।

नाम फिल्म का नाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, नगमा निगार थे आनंद बख्श की, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, सुनिए आशिक फिल्म का नगमा अनुराधा बोडवाल और कुमार सानू की आवाज में, नगमा निगार समीर, मौसीकार नवीन शर्मा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबीना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। मरकजी काबीना ने अमरावती में अहमदाबाद मेट्रो और सरकारी दफातर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स के तोसी समेत 4,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। ईरान ने उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों और खलीज में दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। अमरीका ने ईरान के ठिकानों पर हमले करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं। और मौसमियाती महकमे ने अगले 3 दिन में दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में मौसम में नुमाया तब्दीली की पेशगोई करते हुए शदीद गर्मी से राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखबा पहले वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू का दौरे हुकूमत 4,398 दिन का था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4,399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पेश किया पास की। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस करारदाद में वजीर आजम के मुसलसल मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुल्क की खिदमत जैसे तारीखी संग मील और अजम व इरादों का खास तौर से जिक्र किया गया है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जनाब वैष्णव ने बताया कि काबीना ने आज 2,169 करोड़ रुपए के बजट के साथ अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A को आगे बढ़ाने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसमें 5 स्टेशनों के साथ 6 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। वजीर मौसूफ ने बताया कि जब फेज 2A काम करना शुरू कर देगा तो अहमदाबाद गांधीनगर में 77 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। उन्होंने कहा कि काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में मरकजी हुकूमत के दफ्तर कॉम्प्लेक्स और मरकजी हुकूमत के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी है। आलमी रहनुमाओं ने वजीर आजम को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वजीर आजम की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत और सबकी शमूलियत वाले और इकतसादी तौर पर फाल भारत की उनकी दूरअंदेशी को खराज तहसीन पेश किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके ने एक खत में कहा कि यह उसूलियाबी न सिर्फ जनाब मोदी के कई साल तक ओहदे पर रहने का नतीजा है बल्कि उस भरोसे और एतमाद का भी इजहार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अवाम ने उनकी क्यादत के तई जाहिर किया है।

उन्होंने भारत की काबिले जिक्र इक्तसादी व समाजी तब्दीली का भी खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की दूरअंदेशी से बहुत से लोगों को भारत की सरहदों के पार तहरीक हासिल हुई है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मारापे ने एक जाती वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म मोदी को एक मिसाली शख्सियत और क़यादत की मिसाली शख्सियत करार दिया है। उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें अच्छी जिंदगी बख्शे जाने की एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया है। वज़ीर आज़म मारापे ने पापुआ न्यू गिनी की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि दो तरफा तल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो की वज़ीर आज़म कमला प्रसाद विशेषर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत आलमी मामलात में एक कायदाना आवाज़ बनकर उभरा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के एक मामूली पस मंज़र से शुरू होने वाले सफ़र से 3 लगातार मुद्दतों तक 1 अरब 40 करोड़ लोगों के एक मुल्क की क़यादत करने को उजागर किया और गैर मुल्की पॉलिसी, इकतसादी तरक्की, बुनियादी ढांचे और समाजी व इकतसादी तरक्की के मैदानों में भारत की इन अहम वसूलियाबियों का जिक्र किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान की फोर्सेस ने रात में एक दूसरे पर फौजी हमले किए, जिससे कशीदगी में इजाफा हो गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। अमेरिका की मरकजी कमान ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराए जाने के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर 9 जून को उसकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ अपने दिफा में हमला किया। एक दिन पहले ही अबनाए हुरमुज के नज़दीक इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था। सदर ट्रंप ने कहा कि इसके हमले के दोनों अहलकार महफूज हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अबनाए हुरमुज के अतराफ अमरीकी हमलों के जवाब में आज खलीज के खत्ते में उर्दू में अमरीकी फौज के एक ठिकाने और 21 दीगर ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अबनाए हुरमुज में बंदरगाही शहर सिरिक और किश्म जजीरे पर हमला किया गया। उधर उर्दू की मुसल्ला अफवाज ने हमले की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने अल अजराक की तरफ ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को मार गिराया। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका सूबों में पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों में कम से कम 13 अफराद मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा कि कल रात सिविलियन घरों को निशाना बनाकर यह हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान की फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और जारहियत की हरकत करार दिया। इंसानी हकूक की अलमबरदार कई सरकर्दा बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुरअमन एहतजाज पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने पर पाकिस्तान के हुक्काम की सख्त नुक्ताचीनी की है। मजकूरा ग्रुपों ने इंटरनेट बंद किए जाने, बड़े पैमाने पर एकतरफा गिरफ्तारियों और ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा कि खत्ते में इंसानी हकूक की सूरत हाल संगीन तरीके से बिगड़ती जा रही है। इन तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया कि 8 और 9 जून के दरमियान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों एक खातून समेत 25 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें 3 अमेरिका के और 1 इटली का होगा। यह मिशन अगले साल की अवाखिर में अंजाम दिए जाने का प्रोग्राम है। इसके तहत पहली मर्तबा मदार में स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन से चांद पर लैंडर्स का टेस्ट किया जाएगा। मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन में दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में मौसम में नुमाया तब्दीली की पेशगोई करते हुए शदीद गर्मी से राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक इन 3 दिनों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जिससे दर्जे हरारत में गिरावट आएगी। इधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, साहिली कर्नाटक और मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दुर्गा राम नायक की तरफ से श्रोताओ, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने। फिल्म का नाम है लव आजकल और इसे आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सब ने। यह हमें संदेश प्राप्त हुए हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, वड़ंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। इसी गीत को पसंद किया है नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया और अपार ढेंगिया, बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। और दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज के साथ साथ हमारे पास खत भी पहुंचे हैं। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, गांव भड़भूंजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाख और ओम प्रकाश, ग्राम

पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। सेक्टर 67 मोहाली से इसी गीत को सुनना चाहा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, और कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और सुच्चा पाठक, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और निशु, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, सहारनपुर से अनवर साबरी, सन्नो साबरी, इरम और अमन साबरी। आइए सुने आप सबकी पसंद पर लव आजकल फिल्म का ये गीत है।

आइए श्रोताओं अब सुने टशन फिल्म का गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, किडूराम और हनुमान सहारन। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम रणजीतराम किरोड़ीवाल। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावाकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले और सोपान तायड़े। हनुमानगढ़ से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान। सिद्धार्थ नगर दर्रापुर बांबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मन्नू। चक 15 पीएस से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन, आदर्शपाल जोसन और रॉबिन सिंह जोसन। सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। ये खत हमें मिले हैं गांव सूर्यवाला टिब्बी हनुमानगढ़ से सतनाम सवना, जसविंदर जस्सी, सुमन, अंशदीप, तमन्ना, हरमन और बेबी जया। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबी राही महराज जहां। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और ईशानी। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद, वसीम नूरजहां,

दूल्हा नूरजहां, गांव राजपुरा से हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, जवाला सिंह, जगराज सिंह और धर्मवीर झोरड़, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी विकास, प्रियंका।

कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी विकास, प्रियंका, रमन, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी, करणवीर हाउस भुच्चों कैंची बठिंडा पंजाब से प्रेम जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, सिम्मू दमन, अभिजोत और दमनवीर, श्रीगंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा।

आइए श्रोताओं अब सुने इश्क फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र, मोहनलाल, सुनील सुथार और महावीर मिस्त्री। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नौखीलाल वर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही महराज, जहां इनका खत भी पहुंचा था। और सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, गुरप्रीत गौरा, कुलदीप गांधी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। अलीका तहसील डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी सोनू और रजनी। बड़वाहा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और ये पत्र हमें मिले हैं नई आबादी अबोहर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन, करण सोनी, महेंद्र विश्नोई। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि और शिल्पा गर्ग। मंडी हरजीराम मलोट से महेश गर्ग, सुषमा, जशन और विनोद गर्ग। मंडी गोलूवाला से ब्रजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। चाहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा कुलविंदर कौर और अंबा चाहल। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक और शोभा नायक। मसीता डब्बाली से दर्शन लौट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लौट, निहारिका और

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक अंतस का उजास सुनिए 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे।
6: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
7: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं चोर हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ।
2: याद रखें, 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे सुने नाटक अंतस का उजास।
8: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
9: गलतियों का एहसास
2: सुनना ना भूलें आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे नाटक अंतस का उजास।
10: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम युववाणी में फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद। आइए सुनिए अगला गीत, फिल्म का नाम है फना। आवाजें दी हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों ने, और इस गीत को सुनना चाहा है गांव जैसला फलोदी से राजाराम झंवर बिश्नोई, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव, जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश मुनेश देवी प्रजापति, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान, पूजा परिहार, चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण, हरदीप, मनराज विरक, गोरा जगसीर, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, बौरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत, पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया, श्री करणपुर से गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और

जगदीश जोहरी। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी भव्या निवेश और नियति कुमारी, और इसी गीत को सुनना चाहा है जो हमारे पास पत्र पहुंचे हैं। दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत और अंजू बेनीवाल। व्यास कॉलोनी बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। मखू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज। आइए सुने फना फिल्म का ये गीत।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुने। फिल्म का नाम है बाजीगर, आवाजें दी हैं आशा भोंसले और विनोद राठौड़ ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी ने। गांव आरायन से बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफरी, सना समा, हीना, शकीला, जैस्मिन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सुराज मोहम्मद, जावेद अंसारी। अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद, पूनम, रवि, मेहुल चंद, नेहा, लक्ष्य, माधव, कोमल, रवि कुमार। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बेबी जानविका। इसी गीत को सुनना चाहा है कवाई सालपुरा जिला 12 से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक, मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी और विश्वजीत ने। और हमें खत मिले हैं इसी गीत के लिए आरायन राजस्थान से रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर सोलंकी, विष्णु, राजवीर, रमन, जस्सू पंवार और जगवीर सोलंकी। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। चौटाला रोड डब्बाली से अंग्रेज सग्गू, सुखविंदर कौर, रॉबिन और डिंपल। मलोट से जगतार गिल, गैवी गिल और अमनदीप गिल। गांव लुदेसर से पप्पूराम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका, साक्षी और रुचिका देवी। डब्बाली हरियाणा से जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल और मीनू बाकोलिया। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति और सरोजनी। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, ईशान हुसैन, आरिश

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने सोनू निगम और अलका याग्निक को, फिल्म है फिजा। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने गांव घमंडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योतिष, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, आमना, तमना, साइना, विष्णु ढोकिया और इवा धारणिया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। गांव खिंदासर तहसील कोलायत से कानाराम चौहान, बहलोल नगर से नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश, गौरव, पुनीता और आरबी झोरड़। घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जैजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी जैजान। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला कार्तिक व वेदांश। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। इस गीत को सुनने के लिए हम ये संदेश प्राप्त हुआ है पींगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़, इनके साथ कमल साहनी। और ये खत अरावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहन का राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश, नागपुर से शैलेश गवाहन का वैशाली।

काली श्वेता ध्वनि ग्वाहन कर परी। मंडी हरजीरा मलोट से महेश गर्ग, सुषमा गर्ग और जशन गर्ग। शीतला गेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन खींची, आजम अकमल हुसैन भियानी और अमजद अली खींची। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन सोनी, जैस्मिन और रेखा। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू। नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कांत चौधरी, कपिल देव तरड़। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता, प्रिया नैना जाखड़, हेमानी। हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय, डॉली, पूजा, प्रभा देवी तामोरिया। बन भगेरा से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज और अंजलि सारवा। दौलतबाग मुरादाबाद से कासिम अली, नदीम अली, जाफर हुसैन, नईमा और जुन्नेद अब्बासी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरशब्द राहुल। आइए श्रोताओं, आप सबकी पसंद का ये गीत सुनें।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सहराइकी। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 6:45 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले। संध्या 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम रहेगा चर्चा का विषय है और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हेलो मन भावन। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया, प्रस्तोता हैं विकास पारिक। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45। खेतिहरम वास्ते यह कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:10 पर। इसमें जानकारी का विषय रहेगा नकली असली खाद की पहचान कैसे करें। मानस गान का सेसवर पाठ आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुप्रभात यह कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:30। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे निराशा में परिवार का साथ, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। और कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। मरुमंगल यह कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:10 पर। कलाकार रहेंगे करीम खां, खजड़ला। कल सुबह 9:30 पर आप एक नाटक सुनेंगे अंतस का उजास, लेखक हैं सुमन कंवर, निर्देशक हैं नवीन सिसोदिया और प्रतिभागी रहेंगे नवीन सिसोदिया, विश्वल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, अक्षत चावला, सुमन कंवर और मधुलता पुरोहित। ये नाटक आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर। कल सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम होगा कल दोपहर 12:05 पर। खेत खलिहान ये कार्यक्रम होगा कल दोपहर 12:50 पर। इसमें जानकारी का विषय रहेगा साइलेज कैसे बनाएं। महिला जगत आप सुनेंगे कल दिन में 1:05 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेंगे विश्व खेल दिवस, कैल्शियम की कमी के कारण व निवारण, पुराने सामान से घर को दें विंटेज लुक, दहेज लेना व देना अपराध।

सेहत से भरपूर मूंग व मोठ। कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कल संध्या 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में आप सुनेंगे चर्चा गवार की उन्नत खेती, उजाला आहार, पशुधन की देखभाल, और आप कल चौपाल में एक नाटक भी सुनेंगे कामरो हुनर। लेखक हैं बीरूराम चावरिया और प्रस्तुतकर्ता नवीन सिसोदिया। कल रात्रि 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा। और कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका, जिसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सैराय की।

0: ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋ ਸੀ। ਗਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹਨ ਸੋਫੀਆ ਮਲਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਾ ਮਿਲਸਾ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैराइकी। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले की जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के फोर लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
2: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा सत्य यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: इस उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना

0: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे एमएनआईटी भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और एआई क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बीओटी मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल रिफाइनरी के एलपीजी और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागौरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच एफएसएल टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4-लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जैसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद

0: विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटरडाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध जाँच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूमर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरारी तेल रिफाइनरी इनी महीना उत्पादन स्वरूप है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश में सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन्हें देश री जनता रा वारी अगुवाई माई अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वारा बधाई संदेश माए प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल ने देश माए बदलाव लावण वालो जमानो बतायो। ये मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA री नई दिल्ली माय खास मीटिंग राखी जी। मीटिंग माय NDA गठबंधन रा सदस्य दला और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। इस दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावां सागे। साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावण रा नजरिया रो जायजो लियो चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई मीटिंग माय शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडली प्रधानमंत्री मोदी रा मान माय आज एक प्रस्ताव पास कैरर वाना ई उपलब्धि सारू बधाई दीनी। मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माय खबर नवीसा ने इन री जानकारी दीनी। वे प्रधानमंत्री री ई उपलब्धि ने देश री 140 करोड़ जनता रा भरोसा री निशानी बतायो।
2: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वाने कागज लेकर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खतमाय मांडियो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओड़ी बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओर आखा राज्य माए खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी जी।
3: ओम तत्वाजानी ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्री यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी।

0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पार्लिमाए कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
1: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में राखी चिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावां और संगठन नारी ओरों प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करन पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरियाई देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली में नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करन रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन में भेवन वाली ई मीटिंग रो खास मुद्दों 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग में उद्यमिता और कौशल विकास ने बधावो देवन और देश में काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारे में विचार करियो चावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसरों जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। इस आगे प्रदेश माय एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य में आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो करन रो ही कार्यक्रम है। इन पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए राख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भेला। इरे जरिए देश माए लारला 12 साल माए भिया ऐतिहासिक विकास सुशासन और जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई चावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे चावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार चैनी आज जयपुर पधार्या। अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात रा जामनगर माए मारो पहलो एआई सक्षम डेटा सेंटर खोलन रो ऐलान कीनो है। ओ दुनिया रा सब बत्ती हलचल वाला डिजिटल बाजारा माए शामिल फैला जठे सामान और एआई जुड़िया बूता ने मजबूत बनावन सारू विश्व स्तर रो बुनियादी ढांचो मुहैया करायो चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है। वह कहो कि घरां ताई पाइपलाइन रे जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है। श्री पुरी कहो कि LPG कनेक्शन ने PNG कनेक्शन माए बदलन री कोशिश करी जा रही है। केंद्रीय मंत्री कहो कि कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन री कोशिश कर रहा है।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है। एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन रा काम ने मंजूरी दे दी नी है। इन्हें करीब 1,359 करोड़ रुपये बत्ता खर्चों बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल माथे विकसित करियो चावेला। इन्हों नागौर और बीकानेर बीच जुड़ाव बेहतर वेला।

0: चतरा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरियों उत्पादन इन्हीं महीना स्वरूप हेवन रा आसार है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो का इनु प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा और आमदनी रा नुआ मौका बनेला। मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीकों राखी जी मीटिंग माई पोल रहा है। वह कहो के HPCL रिफाइनरी रा LPG और दूजा उत्पादन है बत्ताऊ बत्ता काम ले तय करियो चावेला। मुख्य सचिव बतायो के 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला। जयपुर रा खो नागोरियान हल्का माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए काल लाई लागण भी मौताना मामला माए एक ASI समेत 9 पुलिस वाला ने मुअत्तल कर दिया चिया है। पुलिस इन हल्का माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रिया और गोदामा ने सील कर दी ना। हादसा पाछे इन हल्काओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी ची। FSL री टीम मौकाओं नमूना भेड़ा कर मामला री जाँच कर रही है। रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजो है। अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल HRMS आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रातेत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवाजी चियो है। हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री परेशानियां आगे करण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो चावेला। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके निपटावन री कोशिश करी चावेला। मौसम राज्यरा घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। श्रीगंगानगर चूरू पिलानी फलौदी बीकानेर और जैसलमेर माए 44-46 डिग्री सेल्सियस तापमान बीच है लूरो घणो असर रहो। दूजिकानी दिल्ली और हरियाणा लाग्योड़ा राज्यरा कुछ हल्का माए बादला मनबासा गए आंधी चाली। अलवर हनुमानगढ़ झुंझुनू और भरतपुर रा कई हल्का माए बारिश हुई। मौसम विभाग बीकानेर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए कालों 14 जून ताई जोरदार बायरो बाजण सागे कठे कठे बादला ने गाज और बीजनिया ने चमक बीच बिरखा वेवन रा आसार चताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून दीतवार ने विचार बतावेला। इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-11780 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन लिराओ सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन लिराओ। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवन वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माए प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माए शिरकत करेला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन री मंजूरी दीनी। और पचपदरा री तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन स्वरूप हेवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल में पत्रोत्तर।

0: राम राम नवीन भाई, राम राम।
1: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम।
0: कार्यक्रम सुनिया सगळ्या परिवारान है आपना कने छु घणी घणी।
1: राम राम।
0: और आज अपा कागज और मेल जका है बेबी संभाल ला रहे, और देखण आ रहे हो कि थारकन जका कागजी है बेबी की है,
1: मेरे
0: और
1: कने भी
0: संदेश भी
1: है।
0: थे देखण ला रहे हो।
1: हाँ, संदेश तो देखो घना ही ऐड आज तो है।
0: हाँ, संदेश आइड। और आज भाई लोग की प्रतिक्रिया है बा भेजड़ी है, क्योंकि आज पत्रोत्तर कार्यक्रम है नवीन भाई।
1: पत्र उत्तर मतलब पत्र आऊ अपन
0: उथला देना
1: वो थोड़ा देना
0: है।
1: है तो पट
0: हाँ
1: दूंगे।
0: बिल्कुल। और 20 रुपये लाने थाने अपना जका भाई लोग है ना बाने बता देवा
1: हाँ,
0: के जका संदेश भेजे है, तो भगवान प्रतिक्रिया ही माननी आज तो है ना,
1: आज तो सिर्फ प्रतिक्रिया है
0: प्रतिक्रिया है। और कई भाई लोग फरमाइश भी मान दी थी अगला कार्यक्रम में या
1: बे,
0: ना।
1: आपने एडमिन बैठे हुए डिलीट कर दिया है।
0: बढ़िया बढ़िया। तो सह सु पहली आपने क्यों संदेश है बांचो दंग।
1: देखो ओ संदेश आयो है, गांव अरैणु,
0: अच्छा
1: बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल। 3 तारीख खतारा उथला, बकरी पालन एक व्यवसाय, रख रखाव एक बहुत बढ़िया नस्ला।
0: अच्छा,
1: ये
0: नस्लों के
1: लिख
0: बारे में लिखो भी, बकरी पालन के बारे में थे जी, बढ़िया बढ़िया नस्लों बताई भी, बारे में आपा जानकारी दी।
1: जानकारी तो बता रहा। देखो
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ये अलग अलग तारीखा की और लिखी है।
0: अच्छा, एक कार्यक्रम नहीं तो
1: एक है
0: बढ़िया
1: 6 तारीख
0: सुना
1: में जी जैविक संतुलित खाद बताई, बड़ा बढ़िया लागिया ने
0: है। हाँ
1: है। एक है, एक प्रश्न हो रहा है नैनो खाद के उपयोग के बारे में, के आनी के फायदे वे भी बता दो। तो वो देखो मैं विशेषज्ञ ने बुला
0: आपा
1: थाने बता से
0: विशेषज्ञ
1: जरूर,
0: बुला सकते हैं तो
1: पर एक
0: बिल्कुल।
1: बात है, नैनो खाद है काम की है,
0: हाँ
1: ठीक है नी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हर गीत बजन नाटक गाना सुनाते रहे शाह। ए सारों पहले राम राम करी बात में बता नहीं भूल गयो
0: हाँ, राम रमी आंगी पूर्ति हुई है अपना दी।
1: है। तो देखो अगलो जी को मैसेज आयो है, ए संदीप मक्कड़ पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से।
0: अच्छा
1: गोराया में थान ध्यान आपनों आकाशवाणी स्टेशन भी है।
0: अच्छा
1: हाँ बड़े वो ट्रांसमीटर लग रहा आपनों।
0: वाह वाह, फिर मांगे तो फिर नेड़े तेड़े ही हो सी हो।
1: बांग बठाई है
0: अच्छा,
1: गोराया के
0: बैठा गई
1: अंदर
0: है,
1: ही।
0: बैठा गई है,
1: हाँ
0: लेकिन फिर भी अपना साथ जुड़ रही है।
1: देखो कितनी बढ़िया बात
0: हाँ बहुत बढ़िया,
1: है।
0: नेस नहीं है आंगो।
1: एक है सारा किसान वीर जी का नहीं बाना ये राम राम दिए।
0: अच्छा,
1: तो
0: पूर्ति होगी सर।
1: थे किसान हूँ मैं भी किसान हूँ,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल, अपन
1: अपना
0: तो
1: दोनों ने मिल गई देखो
0: अपन मिल
1: है।
0: गए अभी थोड़ी देर पहले। हूं देखियो क्या, थारा हाथ गमा कसी और
1: हाँ
0: जोड़ो खाक में लटका रहा, और खेत का नहीं तो सीधा आया ही हो।
1: काम तो देखो
0: करना
1: रामेश्वर भाई करना ही पड़ा है।
0: पड़े ऐसा, करना पड़े।
1: तो एक है कि इंदना धान की रुपाई होगी तो खेत में बहुत पानी हो, तो किसान हूँ। एक है कि चक्कर में निकले सब्जियां लगे और खुद बाजार में जाकर बेच दे।
0: बिल्कुल, आम बात लिखी है कि आपने जो धान अर्ज की, आपने ये क्षेत्र का मां नवीन भाई, धान जो है वो काफी क्षेत्र का मां हुआ है, और बिया भी वो राइस बेल्ट का नाम से मशहूर है। और आ बात कही है कि आपने धान वालों को चक्कर है नहीं, एक बार छोड़ गए यार, सब्जी का नहीं ध्यान दे, आ बात लिखी है। तो बिल्कुल बात तो थारी सियाणी है कि पानी जो है वो दिन ब दिन थोड़ा सा कम हो गया नवीन भाई, बिंग वजह से अपन कई किस्म जिकी है, कई फसलों जिकी है, एक बार थोड़ी सी कम करनी
1: देखो
0: पड़ेगी।
1: बात तो थारी सही है, पर ये है कि धान आप बंद तो करना हो रहा
0: नहीं बंद तो कौन कर
1: है।
0: सका, नहीं अपना विशेषज्ञ कह कि एक बार धान जो है वो थोड़ा सा कम कर दो, और दूसरी जी की फसलें हैं बंगो
1: हाँ
0: ज्यादा हो ज्यादा आपने
1: आ
0: बिजार
1: बात
0: दबा
1: थारी
0: करो।
1: सही है, पर ये है कि देखो झटा था नहीं अलग है ना कि पानी की कमी ज्यादा है,
0: हाँ हाँ
1: बैठे थे धान कम कर लियो
0: हाँ बिल्कुल,
1: है।
0: सियाणी बात
1: अब
0: है।
1: देखो गांव की मंडियों सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति शिवम ढुकिया, सरिता सचिन, अमना तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया, औरंगी दोई तीय छोटी ईवा धारणिया। एक
0: अच्छा
1: एक है कि चौपाल पेश करण आला रामेश्वर भाई जी ने मोकली मोकली राम राम। थाने एकला ने दिए थे रखो देखो
0: नहीं नहीं
1: है,
0: आज तो नवीन भाई हूँ, आप दिए थाने दे देसू।
1: आधे दे दो चलो थे, मतलब
0: हाँ
1: बड़ा दिल का आदमी
0: नहीं नहीं
1: है।
0: बिल्कुल।
1: एक लार लबू द्वार ना चौपाल में कृषि की रेडियो रिपोर्ट सुनी जी क्या ना बहुत दाई आई है।
0: अच्छा,
1: रेडियो रिपोर्ट बापा
0: आपा
1: क्रिब
0: करके ले
1: क्रिब
0: गया
1: को
0: है
1: आरी
0: ना।
1: बा।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: एक
0: टिपेरे नु ले
1: एक
0: रहा है आपा।
1: हाँ एक पितरोत्तर जी को नवीन भाजी सा गाना घणो फोटो लागे ठीक है। और चौपाल पेश करण आला जी का पेश करता है बाने, सब ने एक एक गीत भजन जी का हुआ है वे सुना दिया करो, और जानकारी भी जी की है वे बढ़िया दिया करो थे, तो थोड़ी घनी शिकायत भी लिखी
0: बिल्कुल आंगो मोकलो सारो,
1: है
0: धन्यवाद है कि ये आपने जो कार्यक्रम जो करने सुन गए, प्रतिक्रिया लिखी है।
1: ये लिखियो है कि कई जिकाए थे जानकारी आधी दूरी दियो, तो आधी दूरी कौन देनी भी रामेश्वर भाई।
0: नहीं, आ ये है थाने बता देवा कि नवीन अपना भाई है ना, जका ये बड़ा सुलझेड़ा और जानी जान है, किसान भी है, और ये जी हम बतावा बिंग साहब सु मैं भी थोड़ा सो किए का, आलो लिखो जो है वो पीट लिया।
1: कोई नहीं देखो उसका अपनी गलती रहेगी, आपा वो जो ध्यान रख सके
0: हाँ
1: आधी आधी जानकारी ना
0: आधी
1: दे
0: जानकारी देखो
1: वहाँ
0: सर, आधो ज्ञान जो है ना
1: है।
0: वो बड़ो

0: खतरनाक
1: काम
0: मरीज
1: को
0: है।
1: नहीं। सही बिल्कुल। अब थे मान लो सब्जी बनानी सिखा दो क्या, तेल डाल लियो, प्याज या गाल दिया, टमाटर
0: सही
1: गाल दिया, सब्जी डाल दी, मिर्च डाल दी, नमक डाल दियो और क्या सब्जी तैयार होगी। पर थे वो बताया को नहीं गैस भी चालू करना है,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फिर
0: बात तो
1: आधी
0: सही कह
1: जानकारी
0: रहे
1: में
0: हैं।
1: गड़बड़ हो जाए
0: नहीं
1: मामलो
0: नहीं
1: है।
0: आधी अधूरी जी की बात ना है बे, आपा अगर आपने तरफ से अगर इसी हो ही है ना तो माफी का हकदार हाँ, है ना।
1: हाँ
0: थारी शिकायत जी
1: बिल्कुल,
0: की बात जोड़ी मांडे बैठे अनवीर
1: शिकायत
0: भाई,
1: मारे यहाँ सिर माथा पे देखो
0: सिर
1: है।
0: माथा पे।
1: एक है गांव हिरावली फाजिलका पंजाब, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, ए राय, राम राम, रामेश्वर जी, अरविंद सिसोदिया जी, दोनों ने मिली राम
0: बिल्कुल दोनों
1: राम।
0: ने मिल लिया, बात दुआ दूंगी
1: अब
0: अब भाई,
1: दी होगी अब
0: है ना।
1: तो है। पत्रोत्तर कह कि मैं लाइव सुन ला रहे हैं, चौपाल में जी का प्रोग्राम भी रोज सुना, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग पे काम करे करे,
0: अच्छा
1: अरे दुकान पे काम करता करता चौपाल सगे सुनाई
0: मिस्त्री
1: है।
0: है और सागर रेडियो भी सुने है।
1: हाँ कितनी बढ़िया बात है देखो।
0: नहीं बिल्कुल सही है, बस आने एक बात कैसे अगर मोटरसाइकिल जल्दी भी सही करो तो बिंगा जी का ब्रेक है ना बे
1: हाँ
0: बढ़िया तरीकों चेक करना है सब, है
1: अरे
0: ना।
1: भाई जी ब्रेक बहुत जरूरी हुआ
0: जरूरी है ऐसा,
1: है।
0: जरूरी है।
1: नहीं ए मने लागे कि यहाँ समझदार आदमी
0: हाँ
1: है
0: एक बार डिप डिप वाली केबल लेकर आया बा,
1: इंडिकेटर है।
0: इंडिकेटर बन भी थोड़ा ध्यान दे आन के वहाँ
1: कई लोगों का तो इंडिकेटर यहाँ टेढ़े वेढ़े पड़े रहे हैं।
0: ध्यान रखना जरूरी है सभी चीज को।
1: अब मैं थारली मोटरसाइकिल में देखियो बेमन टूटेड हो है
0: हाँ है ना
1: हैं।
0: फटफटियो अपने कन भी।
1: हाँ तो देखो अब आगे क्या ऐड है, आकाशवाणी श्रोतगढ़ कार्यक्रम चौपाल जी को है मैं नियमित रूप से सुना ठीक है।
0: अच्छा
1: अरे आना बहुत ही बढ़िया लग है। और सागे क्या है कि बुआई की जानकारी दो खेतों के बारे में बाना बढ़िया लग है। आगामी मौसम की जिक्र जानकारी दो बाना चौकी लग है। और कृषि जगत की जिक्र भी जानकारी दो बाना बढ़िया लग है। अरे लिखे वेरे कटू है
0: हाँ अच्छा कटू लिख रहे हैं
1: भोपालगढ़ राजस्थान, धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार
0: रल मिल के लिखे है,
1: रल
0: बड़ी
1: मिल
0: अच्छी
1: गए।
0: बात लिखी है आपको मोकलो सारो धन्यवाद, और
1: हाँ
0: आगे भी एज की जानकारी सुने और सुन के फायदा जरूर उठाओ ऐसा।
1: बिल्कुल रामेश्वर भाई देखो एक और आ गयो वो थारा वास्ते है देख लो रमेश चावरिया जी वास्ते रामेश्वर जी वास्ते लिखे हो
0: अच्छा
1: क्या पत्रोत्तर
0: अच्छा
1: पेश करता भाई जी ने मारी ओर से मोकली मोकली रामा श्याम आम नादी दे दो थे
0: बिल्कुल
1: ठीक है
0: आदि
1: नहीं।
0: दे दी साओ लो खाकी ब्रेड वा तो थे रख लियो।
1: आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने पे क्या है कि सगला रेडियो प्रेमी भाई बहन ना घनी घनी बधाई।
0: अच्छा
1: तो देखो
0: अच्छा
1: 8 तारीख ने अपना आकाशवाणी का के 90 साल पूरा हो गया
0: 90 साल हो गया,
1: है।
0: और सगला श्रोताओं ने आप बधाई देवा
1: बधाई देवा
0: बिल्कुल।
1: सा ये 90 साल अपना एकला दंपत तो होया को नहीं
0: हाँ
1: है श्रोता करे
0: श्रोता भी करे
1: है
0: है बे तो बांगो पूरो हिस्सेदारी है सा
1: बिल्कुल पूरे से ज्यादा घूमे तो बंगी
0: बिल्कुल।
1: है। नाटक पग फिरवाना बहुत बढ़िया लगे। ये लिखण आ रहा है चकपंद्रा पीएसयू, सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन, मेलबर्न सू, रोबिन सिंह जोशन, वैंकूवर सू। मैं आना एक बात और कह सू एक पहले कंगारू सू बना के भेजा करता
0: आजकल भूल गया उसी।
1: भूल गया तो यहाँ पता कौन लगे है।
0: नहीं नहीं कंगारू अब गर्मी मना लाग
1: अच्छा
0: दे
1: उसके गर्मी में बारह नहीं निकलते अभी उसके है
0: गर्मी ज्यादा है
1: तो गर्मी तो है तो एक भजन को सुनाऊंगा कि थे
0: बिल्कुल। आपा एक भजन सुन लिया लो
1: सुना दो
0: थे भी सुनो सा।

0: आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी, सुनिए दिनांक 13 जून 2026 शनिवार सुबह 9:30 बजे।
1: सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन संभालो, दुश्मन ने पहाड़ी वाले मोर्चे पर भारी हमला कर दिया है।
0: याद रखें, नाटक आखिरी चिट्ठी सुनिए 13 जून 2026 शनिवार सुबह 9:30 बजे।
2: अर्जुन, सामने वाली पहाड़ी पर दुश्मन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी संख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन हमें उन्हें रोकना ही होगा।
3: संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते रवि, हौसले से जीते जाते हैं।
0: दिनांक 13 जून 2026 शनिवार सुबह 9:30 बजे सुने आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति नाटक आखिरी चिट्ठी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल नवीन भाई, भजन सुनायो।
3: बहुत ही फूट रो
2: बड़ो फूट रो भजन हो बोल सुआ राम राम और इंग गायक कलाकार जखान बे सतीश देड़ा और सीमा मिश्रा को गाइडो।
3: वासा सीमा मिश्रा की तो देखो आवाज ही मिश्री वर्गी है, हैं
2: बिल्कुल आवाज
3: तो
2: बड़ी प्यारी है।
3: पत्थर पड़ दिया के आगे और ऐडा जी
2: आपने संदेश जका ऐडा भी बांचो।
3: हां संदेश देखो, सूतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन, बेबी जानविका, एक है कि चौपाल पेश करना रहना हमारी तरफ से राम राम।
2: बिल्कुल राम राम आने भी
3: है। एक है मैं पिछलो पत्र तो सुनो, लोक भजन लोक गीत प्रोग्राम पेश करना को अंदाज जी को है वो आने फुटरो लागे सा।
2: बिल्कुल धन्यवाद सा।
3: और शुक्रवार को जिको गीता और गजरो है बे मैं लोक भजन लोक गीत जिगाते सुनाया।
2: हाँ।
3: बेबी आना चोखा लाग गया।
2: अच्छा अच्छा।
3: अरे एक है कि मारे जी को तो शामिल

0: जोखी लगे सा
1: बिल्कुल धन्यवाद सांगो जी,
0: ये भी अपना नियमित स्रोत है,
1: नियमित स्रोत है, रेडियो बड़ा चाव सुने,
0: कई बार नाराज हो जाए करे
1: ना ना राजाराम जी रुसे करो ना क्या इया है का अपना भाई बंधुओं को जो को बैलां को जो को प्यार है ना वो बण्यो रेनो चाहिए रु सारा सी में के पड़ियो सा है ना
0: आप आंग वास्ते बैठे हैं तो काम क्या
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पण इया है आपका सागर रुस जे तो मना लेंगा सा कोई दिक्कत
0: मना लेंगा जी अपना ही है। आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रत्येक बुधवार ने प्रसारित होने चौपाल जी को कार्यक्रम है वाने चोखो लागे, खेती बाड़ी की जानकारी, फसल बोने को तरीको, उन्नत किस्मा, ये सारी चीजें बढ़िया लागे। लिखना आ रहा है बलकरण वर्मा,
1: अच्छा,
0: अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से।
1: अच्छा दूर हूँ भेजिए,
0: देखो कितनी दूर हुआ है, पूछ गया अपने करने
1: की थोड़ी बहुत ठंडक महसूस हुई उसी
0: बिना भी गर्मी है,
1: गर्मी है
0: भाई अभी तो सारे तरफ
1: सारी गर्मी है ना।
0: देखो पत्रोत्तर चौपाल में कॉटन सिटी सूरतगढ़ वास्ते रमेश चावरिया जी ने पत्रोत्तर पेश करता है भाई जी मारी ओर से मोकली मोकली राम राम।
1: अच्छा
0: आ लो रामेश्वर भाई जी,
1: आ लो जोड़ी मांट ली जा लो ले आगे आगे सा पण आधी पर्दी की राख लियो थे
0: ना भाई जी, थारा नाम दिए थाने देश में तो
1: नहीं मेरे कन तो की थोड़ी भेड़ी ज्यादा ही हो रही है।
0: देखो डेरी मान रखी है,
1: हां बिल्कुल
0: 90 साल के है कि पूरा होना आ गया, सगला जी का रेडियो प्रेमी भाई बहन है नी बाने घणी घणी बधाई दी है। अरे जी को कहे कि थारो जी को कार्यक्रम पेश करना को जी को अंदाज है अनुभूत दाय आवे
1: नहीं बिल्कुल मोकलो सारो धन्यवाद आंगो का अंदाज जो को है ना वो सब को ही अच्छो है और कार्यक्रम सुनो करो और सुन के प्रतिक्रिया जी के बाबी मांडे करो और फायदो भी कार्यक्रम को उठाई करो।
0: हाँ ये लिखना रहा रमन वर्मा बस स्टैंड के कनु बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से।
1: तो अंग सागा अमन वर्मा भी हुई करे कई बार,
0: आज कोनी
1: आज कोनी के आज शायद कोई काम धंधा लाग रहा
0: है, काम लाग रहा है उसी तो आज एकला लिख दियो।
1: हां हां
0: हैं अब कोई ईमेल भी आईडी तो
1: पढ़ दो, मेल आईडी देखो हूं खिड़की खोले बैठे हूं नवीन भाई,
0: हां खिड़की में पढ़ दियो।
1: ओ मेल पे लो पुग्यो है उम्मेवाड़ा शू नोरंग सुथार आंगा बेटा जी है विष्णु सुथार नीरज सुथार योगिता सुथार जया सुमन आ रण मिल के मेल मांडे है एक कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लागे और चौपाल पेश करने वाला हमारा कानी शू घणी घणी रामा श्यामा,
0: तो आना भी घणी घणी रामा श्यामा सा।
1: और ओ मेल पूग तो हुई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश हूँ और लिखियो है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी रितिक और बलवीर सिंह ए भी का खेती किसानी जो को कार्यक्रम है वो बड़ो दाया है और पसंद आवे
0: साथ। बहुत बहुत धन्यवाद थारो,
1: तो आंगो मोको सारो धन्यवाद करा। और गाँव 11 टीका तहसील रायसनगर छू अपने ती मेल मांडिया नरसिंह कुमार कमलेश दिवांशु यशवनी प्रियांशु मुकेश योगिता ओम प्रकाश रोशनी देवी ये लिखा है नवीन भाई का चौपाल जो है वो दो आवाजा में आवे बड़ो अच्छो लग रहा है और नवीन भाई और अगे मारो नाम लिखे सर
0: थारो तो नाम देखो आई आवे
1: हाँ लिखे के जो को आवाज में आगे जादू है नी वो 45 मिनट कद निकल जाए माने पतो ही कौन लगे,
0: मान तो आपने कौन पतो लगे,
1: बिल्कुल माने कौन पतो लगे ना थारा जगह मेल है बड़ा शांत रहा है और आवाज को जो जादू है आवाज की सारी कहानी है सा शब्द अच्छा लगा भी बात कई बार लिखे गए तो इन लिए मोकलो सारा धन्यवाद आपने अगलो मेल पूग तो लखवाड़ी हेड छू भंवर लाल कृष्णा सौरव विशाल राजबाला ममता नव्या लक्षिता संग्रिया छू अंग सागे है मुकणा राम और ये लिखा है कि चौपाल मारे हिविड़ा छू जुड़ेड़ो है गीत भजन नाटक खेतीबाड़ी की जी जानकारी है वह बढ़िया लगे सा और बाजार भाव की जी जानकारी है वह भी घनी बढ़िया लगा अगा लिखे है कै थे जोड़ी मान लियो नवीन भाई आ लिखे नवीन भाई जी ने मोकली मोकली रामा श्यामा
0: ते ये आप झूठी तो कौन पढ़ दी
1: ना ना सा हूं सामने सेंदे देख ला रही
0: मान रखी है
1: हां बिल्कुल बिल्कुल तो हमको भी मोकलो सारा धन्यवाद
0: मोकलो सारा धन्यवाद सा हिवड़ा ते हमको चौपाल जुड़ेड़ो है मैं तो को अपने हिवड़ा सु निकला चौपाल
1: बिल्कुल हिवड़ा सु निकला और अन पसंद आवे वास्ते हम मोकलो सारा धन्यवाद। ओ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ छू आपने ती मेल पूग तो है नवीन भाई
0: बताओ
1: टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप और कालका शुंग सागर सुखचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ये लिखा है कार्यक्रम पेश करने वाला ने महारा कानी शु घणी घणी रामा श्यामा और कह थे जीता भी गीत भजन सुनाओ भी माने पसंद आवे सा। अगले मेल की बात करा नवीन भाई तो वो मेल पुग गया है आपने
0: बना उथलो कौन देन दियो थे
1: अच्छा उथलो हाँ धन्यवाद करा
0: धन्यवाद तो दियो पहले इतनी दूर से लिखे देखो कालकाऊ
1: कालकाऊ लिखे है और आंगो मोगलो सारा धन्यवाद देवा सा आगे भी उड़ीक रहेगी है ना
0: उड़ीक
1: रहेगी थोड़ी सी छोटी मांडी है ये वास्ते हूँ आकाशवाणी का गौरवशाली जी का 9 साल आपने पूरा हो गया नी 90 साल आगे
0: पीछे
1: नहीं सियाणी बात है थारी और हाँ शुभकामना लिखी है और बधाई लिखी है साथ तो अन्य भी मोकली सर ये पास शुभकामना और बधाई दिया
0: बिल्कुल मैं तो पूरा आकाशवाणी परिवार ने सगला श्रोता ने 90 साल की बधाई
1: मोकली सर बधाई और आगे लिखे चौपाल एक शुभ प्रोग्राम है आकाशवाणी

0: सिटी सुरतगढ़ को, जो हर वर्ग को श्रोता इन सुन के और लाभ उठावे और खेती से संबंधित किसान भाइयों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण की जानकारियां सुनने मिले, जिसमें हर किसान जो को है वो फायदा उठावे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार नाटकों का जो सिलसिला चौपाल में सुनने मिलन ला रहा है, नाटक है, रूपक है, रेडियो रिपोर्टिंग रिपोर्ट है, राजस्थानी गीत है, लोक भजन है, भी बड़ा अच्छा लगन आ रहा है। और आगे भी यहाँ लिखियो नवीन भाई के आ दोनों कार्यक्रमों में जो अधिकारी है नहीं अपना नवीन सिसोदिया जी चौपाल में बहुत रुचि के साथ कार्यक्रम के साथ बने रहे, तो इन वास्ते बने शुभकामनाएं दीवा सर।
1: आ रमेश भाजी ते आप ही बोलन आ रहे हो।
0: नहीं नहीं हूं थरका नहीं आओ, देखो सरकार दियो थे पढ़ लियो थोड़ो डोलियो नेड़े करके देख लियो थे।
1: हां लिखड़ी तो है,
0: हां लिखड़े है ना।
1: वाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद सा आने तो।
0: और आगे लिखे है के प्रोग्राम ने तैयार करने में जका पर्दा के पीछे काम करे नहीं बने भी मारे काने से घणी
1: निकली। बिल्कुल मैं तो कहूं पर्दा के पीछे जी कहनी बांगो भी बितो योगदान हो।
0: बिल्कुल वो कार्यक्रम जो आंती पूगणे के मां कई जका अपना भाई बंधु भाईलान में फणिया ताण हो रे नवीन भाई।
1: बिल्कुल अब अपने इने इंजीनियरिंग में बैठे है
0: हां
1: सगला बेचारा सारा दिन लागे रे।
0: हाँ कंट्रोल रूम में बैठे है, ट्रांसमीटर पर बैठे है,
1: तो जब जाके प्रोग्राम आंकर न पहुंचे
0: श्याणी बात है। और थारकन कुछ संदेश साइड है बेबी पांच दे।
1: देखो संदेश देखो बीरम गांव गुजरात साइड है अजीत भावसार प्रमिला भावसार को आने चौपाल कार्यक्रम छो खोला गया। अच्छा, इतनी सी बात है,
0: मोकलो सर धन्यवाद,
1: कितनी बढ़िया बात है, लेकिन इतनी सी बात है
0: नहीं वो है? बात वो सार वो क्या है कि छोटी सी बात है सारो सार निकाल लेंगे अपन।
1: वो एक गाना है इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है।
0: वाह वाह के बात है, है के बात
1: इतनी है। सी बात है चौपाल चौखो सा।
0: हाँ
1: कितनी बढ़िया बात है। देखो आकाशवाणी सूरतगढ़ का सभी प्रोग्राम आना चोखा लागे सा ये लिखना बताऊँ कौन है।
0: हाँ कौन है?
1: प्रवीण सोनी गुजरात गांधीग्राम लिखा है।
0: अच्छा अच्छा
1: चौपाल बढ़िया लगा है, जानकारी जीके बयान बढ़िया लगा है, खेती की बात गीतारू गजरो लोक भजन लोक गीत और जिको बाजार को भाव है वो है चोखो लागे सा।
0: तो अंग मोकड़ो सारो धन्यवाद सा, एक कार्यक्रम सुनता रहे।
1: ये देखो एक राम राम दी है,
0: कण दी है
1: ये सिर्फ रामेश्वर माहर गांव सादेवाड़ा सिरसा हरियाणा से।
0: अच्छा
1: राम राम है, राम राम
0: तो चलो अपन जोड़ी मांड के भी मांगा
1: आधी आधी कर लियो,
0: आधी आधी कर लियो।
1: देखो संग्रह श्याम मिड्डा जी को खत आ गया अपने कने, ये लिखा है कि इन दिनों अर्ध शहरी क्षेत्र में अर्ध शहरी क्षेत्र में सोलर एनर्जी ने ले गए कि आम जनता के बीच में भ्रांतियां फैलड़ी है, असमंजस है।
0: अच्छा
1: ठीक है, तो क्या सौर ऊर्जा प्लांट लगाना खर्चो जी को वो मिल रहा है कौन मिल रहा है, यहाँ है के है कौन, सब्सिडी मिल रहा है कौन मिल रहा है। तो देखो सारों पहले तो देखो मैं बताऊं, सौर ऊर्जा रोज को प्लांट है नहीं, सरकार की जी की योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
0: अच्छा
1: इमें के कि जी को सब्सिडी आवे नहीं बात तुरंत आपके खाते में आ जाए।
0: अच्छा जी, रुकावट को नहीं,
1: कोई रुकावट को नहीं, मैं तो खुद लगाए हुए।
0: अच्छा
1: हाँ
0: खेत में लगा रखे होंगे, गए होंगे तो
1: खेत में कोनी वो घरार हुआ है
0: था ना। अच्छा घरियाड़ो लगा रखे
1: थे, खेत बाहर भी जाया करो तो।
0: अच्छा अच्छा घरियाड़ो भी लगा रखे खेत में, फिर शायद वो वर्किंग ही हो सके, वो तो दूर खड़ के देख गए
1: वो तो ट्यूबवेल आ रहा है वो तो।
0: अच्छा अच्छा
1: तो एक है कि भाई क्या मिल रहा है बारे में जानकारी दो, आप एक काम कर सिया एक कोई विशेषज्ञ ने बुला ले,
0: बुलाओ बुलाओ
1: है
0: नून तो अठे पर जानकारी ले
1: जानकारी ले कि भी के योजना है के कोनी हुआ है। एक है कि रेडियो हमेशा जनमानस की जागरूकता के वास्ते बढ़िया साधन रहे हुए, विश्वसनीय साधन रहे हुए ठीक है।
0: अच्छा।
1: एक है कि विनम्र सुझाव है चौपाल या कोई भी कार्यक्रम में विशेषज्ञ ने बुलाओ, तो आंगी बात तो आप मान ली सा,
0: बिल्कुल मान ली
1: सा, बहुत ही बढ़िया बात मैंने कही है। अब देखो ए नरेश जी बीच में देखो लिखता रहेगा चौपाल की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया लिखो नहीं तो डिलीट कर दूंगा है।
0: भाई बात है आपने दूसरे जगह भाई लोग कई बार रूस जे नहीं तो हाँ। नरेश भाई भी रूस जे
1: तो अब के कागज हो रहा है वे
0: कागज ले बैठी हूँ, कागज पुगड़ो है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से हूँ और लिखियो है अपना नितबंध्या श्रोता है बुजुर्ग श्योलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत और अंग सागे अंजू बेनीवाल। ये लिखा है कि कार्यक्रम का हूँ थारो नितबंधियो सुनू और रेडियो के माँ जब भी कह आपने चौपाल शुरू हुआ नहीं
1: हाँ।
0: तो सारा छोटा मोटा नानड़िया जो कह भी बेड़ा और कन्नार बैठ जाए
1: हाँ।
0: कह दादा दादा आपने रेडियो चलाओ चौपाल का माँ कार्यक्रम जो है वो जितनी जानकारियां दे भी सुन सिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आगे मोकलो सारो धन्यवाद देवा कथा तो कार्यक्रम सुनता रहा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक कागज और पुगड़े नवीन भाई थेको तू बांचो
1: बांच दो।
0: ओमलेट कैंप मलोट कैंप पंजाब से हूँ सतीश मिगलानी, सीमा साइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल विवान और रमेश मिगलानी, ये भी कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है का कार्यक्रम जो है वो माने अच्छा लगे सा। और ओ आपने ती कागज पुगिया मलोट पंजाब से हूँ राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गेरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भवेश खन्ना, मिशेल खन्ना, किंशुक खन्ना और बेबी दीपांशी दौरा। ये लिखा है कि गीतारो गजरो जो को कार्यक्रम है वो सुना हमें बड़ो पसंद आवे और सगला ने मारा कहने से हूँ रामा श्यामा। और आगा लिखे है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ ने कह मैं आपको खुद को चैनल माना और इंगा मैं मुरीद बन गया।
1: वासा आंगू है चैनल तो
0: हाँ बिल्कुल आंगू ही है, और एक कार्यक्रम आ बिना तो फिर आपने काम ही किया है नवीन
1: को
0: भाई।
1: बीच में एक मैसेज पढ़ दूंगे थे को तो
0: हाँ बंचो बंचो।
1: गांव 12 टीके राइस।

0: नगर सो देखो, धर्मपाल भारती, कृष्णा भारती, विशेष भारती, अंजना भारती, राम राम दी है क्या चौपाल पतोत्र पेश करने ने खम्मा घणी, राम राम
1: अन्न
0: साहब।
1: भी मोगड़ी
0: ठीक है,
1: सारी खमांगणी।
0: रेडियो का 90 साल पूरा हो गया तो घने मानसू बधाई दी है। और एक एक मारा ठहराया श्रीनगर में, नहीं ये 90 साल चुके, बहुत ही धूमधाम बनायो,
1: अच्छा, बधाई हो, बधाई हो।
0: देखा कि बहुत ही धूमधाम मनाया। और जिरे माए राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम भी करो
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: तो आ तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो
1: बढ़िया
0: कुछ
1: बात है।
0: को 90 साल हुए, नहीं वो
1: हाँ
0: अपने लिए
1: हाँ
0: एक जश्न है, इतनी बड़ी यात्रा है
1: जश्न है,
0: अपनी।
1: लोग जो है बड़ा चाव से इन्हें मनान ला रहा है। रेडियो जो को है ना, वो लोगों के दिलांगा मा रग में है
0: यही और
1: नवीन
0: क्या है कि
1: भाई।
0: अभी तो नया नया श्रोता मार्ग ना हजारों नया जुड़े बतावे है।
1: बिल्कुल, बहुत
0: तो
1: ही अच्छी
0: धर्मपाल
1: बात
0: जी और
1: है।
0: पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद सा। आगे के एक आध मेल और बांस दो।
1: बिल्कुल, आपने तो ही मेल पूगती हुई है नवीन भाई, और आ मेल पुगी है आपको जो को अतो पत्तो है नवीन भाई।
0: ऊपर लिखे हो सी देखो,
1: नहीं, ऊपर तो आपने हाँ लिखे, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर
0: हाँ
1: से हूँ, और
0: देखो
1: लिखे है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और अंग सागर है हर्षित और खुशी गोस्वामी। ये लिखा है कि कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाला ने आदरणीय रमेश भाई जी ने और नवीन भाई जी ने मारा कहने से घड़ी न घड़ी रामा श्यामा और चौपाल प्रोग्राम माने बड़ो दाय आवे, और चौपाल में जितनी भी थी जानकारी दी वे बड़ी पसंद आवे, और दिनांक के 3/6/2026 ने पत्र उत्तर सुनो सागर के किसान जो कहे वे कृषि रेडियो रिपोर्ट सुनी भी। मैं नवीन जी और रामेश्वर जी ने बहुत बहुत धन्यवाद और पत्र उत्तर पेश करो वो भी बढ़िया लगे, और शुक्रवार ने गीता और गजरों जो को है वो रामेश्वर भाई और दुर्गा भाई पेश करो वो भी बड़ो दाया हो।
0: देखो सा कितनी बढ़िया बात है कि आना अपना कार्यक्रम दायान ला रहे। अरे
1: बिल्कुल
0: रेडियो
1: बिल्कुल,
0: रेडियो रिपोर्ट और सुनी है
1: हाँ
0: तो
1: कार्यक्रम
0: रेडियो
1: सुनता
0: रिपोर्ट
1: रहे
0: सुनी तो बैंक मतलब बैंक जी की सार है बस, समझ गया उसी। नहीं
1: आपा, आपने भी बा की एक पगतोड़ी जी की है, आप गया यार बटू बा जानकारी ले रहे हो तो बा सफल होगी ना।
0: पर मैं जानकारी भी तो ही कि भी भाई बात है, आपको जो खेत है वो बचाओ,
1: बचानो
0: और
1: जरूरी
0: बचाओ
1: है
0: किया
1: बच्चों गुइया का, आप धीरे धीरे की है कि जैविक खेती जिकी है बार अपनानी शुरू
0: हाँ
1: कर
0: अपना
1: देना,
0: नहीं पड़सी केमिकल जी का है, नहीं केमिकल आपने कम कम करना पड़सी।
1: छोड़ना पड़सी नवीन भाई, क्योंकि अब जहाँ से इकट्ठा है का आने वालों टेम जो है ना वो तो खतरनाक हो जाएगा, अपनी जो की माटी है बा फसल पैदा करनी ही बंद कर देगी।
0: बिल्कुल जदी तो मैं कहूँ गोबर गोमूत्र और जी की ये अपना जी का कन्या जी का पौधा है,
1: हाँ हाँ
0: नीम हो गयो, दतूर हो गयो,
1: सही है,
0: आक हो गयो, अंग उपयोग ज्यादा करा।
1: करनो पड़ेगा, और अब धीरे धीरे अपन इनके एक माटी जिया जिया आपने केमिकल के हिसाब से ढली नहीं तो बिया भी
0: हाँ
1: अपन धीरे धीरे जैविक तरीके से भी डालनी है।
0: एक आपने भी डॉक्टर साहब आया एग्रीकल्चर है रहा, बे मैंने एक दिन बता गया कि जिको कवक लागे करनी पौधा में, कवक जो कोई रोग उजे
1: हाँ हाँ
0: भी मैं सारों बढ़िया इलाज है छाछ
1: आपने गरेज की छा तो दपाऊगी वैसा,
0: आई थे जी की सुबह शाम पियो जी की।
1: दो लोटा अगर लिया तो भाई बात बात छाड़ा मैंने के करे नहीं
0: हाँ
1: कह राड़ना छाने तो मर्जी है बिती बता लियो पर
0: ना
1: राड़ तो नहीं बतानी चाहिए ऐसा ना, माड़ी
0: ना
1: बात है,
0: नाराड़ तो ना बताओ, मैं तो कुछ भी ना बताओ
1: पर
0: है।
1: छा को इस्तेमाल जो है वो बताने के लिए करना पड़े तो कर ही लो।
0: नहीं जी कई दिन मैंने ड्राम में रख गया छाना और ज्यादा खट्टी कर लियो, नहीं
1: अच्छा
0: वो फंगस जी की है, नहीं फंगस मैंने ठीक कर दिया कवक
1: आप
0: ने।
1: बिल्कुल कह दौड़ियो मच्छर जो है वो भी खत्म हो जाए इशू तो
0: हाँ आए तो
1: है
0: कोई
1: ना,
0: बहुत काम की चीजें हैं
1: काम
0: सब।
1: की सही तो कि खर्चो भी कोई पीस हो लगा नहीं, टक्को
0: हाँ
1: लगा नहीं
0: की लगा
1: आपनों।
0: नहीं गीतों थे पहले काट लो बे मुंह है।
1: हाँ इंग लगन फिटकड़ी रंग चौकी छोको,
0: वाह सा तो एक गीत सुनाओगे,
1: गीत सुना दिया
0: सुना दो
1: जो
0: सा।
1: सुनो सा, छोटी सी उम्र परनाई बाबो सा, एक ब्याह लगो गीत है
0: हाँ
1: और दीपाली की आवाज के माथा ना
0: दीपाली की
1: सुनो
0: आवाज में सुना दो सा।
1: लियो सुनो सा।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल संदेश उपिल, आप गीत सुनायो छोटी सी उम्र प्रणाई बाबो सा।
3: बड़े भावुक गीत है।
2: भावुक गीत हो दीपाली को गाइडो और जिसकी छोटी टाबरिया है माने छोटी उम्र में तो नहीं प्रणानी चाहिए नवीन भाई।
3: ना बिल्कुल नहीं।
2: पाप का भागीदार,
3: पाप का भागीदार है। और जेल का भी,
2: जेल का भी कानूनी अपराध भी है। टाबरिया जब आपने पगा पर खड़ा हो जाए आपकी सूरत सामल जाए और अच्छा बुरा को जो को भेद करना आ जानी तो बी टाइम की अगर टाबरंग जी की शादी है प्रथा वो जो है वो करना चाहिए।
3: बिल्कुल करना ही पड़ेगा जी।
2: तो उनको जो ध्यान है वो कौन राखसी?
3: माँ बाप राखसी।
2: गरगज का बड़ा बुजुर्ग नवीन भाई भी राखसी। तो आपने ती मेल पुगती हुई है थे के हो तो बांचो मेल पुग्यो है मुकलावा बॉर्डर एरिया से आकाशवाणी का ए श्रोता है और राइसनगर से मेल भेजे है लिखने वाला है मदन बरोड़, मंजू बाला, प्रीति बरोड़, दिव्य बरोड़, इतेश बरोड़, कामना बरोड़, लुभानी बरोड़, आरती बरोड़, अजय पेंटर, मुकेश और राजू पेंटर, अंगा माऊ बापू, हनुमान बरोड़ और इमृति देवी। एक है कार्यक्रम जो कहवान पसंद आवे हम बढ़ाई लिखी है।
3: बढ़ाई लिखी तो धन्यवाद सा।
2: धन्यवाद कर दियो आंगो। और राइसनगर से अपने ती मेल मांडियो है अपने नित्यवंदिया श्रोता है सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिवप्रकाश, सुनील जांगिड़, धनराज भांबू, प्रवीण सरावगी, साबराम स्वामी। हाँ बड़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया लिखी है नवीन भाई और लिखा है कि पत्र उत्तर चौपाल पेश करने वाला है रामेश्वर भाई और नवीन भाई ने मारा कहानी चूँ घनी घनी रामा श्याम।
3: राम राम सा, राम राम।
2: और आगा लिखे है कि दो आवाजा में जो को चौपाल पेश करो बड़ो पसंद आने आ रहे है नवीन सिसोदिया जी और थारी जी की जोड़ी है बड़ी शानदार है साहब और थारी जोड़ी बड़ी गजब लागे
3: भगवान ही बनाई रखे
2: जोड़िया बनाई रखे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आगा लिखे है कि भाई जी थारी बोली और थारो कार्यक्रम पेश करना जो को अंदाज है बड़ो निरालो है बड़ो आनंद आवे और चौपाल में जब दो आवाजा में पेश करो तो बड़ो पसंद आवे साहब।
3: बिल्कुल आपा कोशिश तो दिखवाई करा कि दो आदमी बैठा है।
2: बिल्कुल बोली तो देखो साहब अपने जांगड़ साहब बोली हर मिनख ने जी की है बात बोलनी चाहिए। हाँ। और बा एक बात के रहनी कह मायड़ खोले सीखिया।
3: अच्छा
2: का मायड़ खोले सीखिया मायड़ मीठा बोल।
3: वाह
2: अतोल येरी ताकड़ी इमृत बाखो को
3: के बात है
2: ना। कोई भी शब्द बोला है कोई भी बात बोला ना पहले पहला तोल नाप करके फिर नवीन भाई आपको निकालना चाहिए।
3: तोले बिना तो भाई जी फिर बाद में मोल देना पड़ जाए।
2: पड़ जाए साहब पड़ जाए। बोली जी की है बा के बार एटे नाक दे और के बार सिरे भी चढ़ा दे।
3: बिल्कुल
2: आगा लिखे के चौपाल के मैं कार्यक्रम लाइव सुन ला रहा हूँ।
3: बिल्कुल
2: लाइव ही
3: बैठे आप ही।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आगा और मांडे है रामेश्वर जी और नवीन भाई ने पूछ के बताइयो कि बिरखा कद्दा आने की उम्मीद है मारा बॉर्डर एरिया का मां का राइसनगर का कोरी आग बरसे सा।
3: आग मन लगा इनू ही दिख है
2: आग तो देखो सर अपनी अठे ददकल आ रिया आ पूछ है कि बिरखा कद्दा सी का नवीन भाई कद बता सी
3: बिरखा देखो
2: आखा देखो दने
3: आखा देखना पड़ सी बिरखा तो आ तो सी बिया देखो एक बात बताऊं कि मौसम विभाग को कहना है कि अगला 5-6 दिन के अंदर जी को तापमान नहीं वो थोड़ा नीचा आ जिसी।
2: अच्छा किस थोड़ा सा शांति मिलेगी
3: सूरज भगवान थोड़ी सी लो कम कर सी मतलब
2: बिल्कुल ध्यास रखो सा नवीन भाई का है आपने जगह भविष्यवाणी आपने जगह कृषि विभाग मौसम विभाग करी है तो बिंग साहब से आपने बरखा जी की अब आसी और बिंग साहब से आपने जगह खेत करिए काम धंधा भी करना है।
3: बिल्कुल करना है।
2: और एक और आ बात लिखी आ गया कि एक निवेदन करा कि गीता और गजर और पत्र उत्तर जो है वो भी दो आवाज हम पेश करो सा।
3: गीतारो गजरो और पत्रोत्तर में तब दो आवी हाँ
2: नहीं आवी हाँ वो तो बात सही है। हाँ। कह गीतारो गजरो भी का दो आजाम पेश करो और आगे भी यहाँ लिखे है कि जितनी भी थे जानकारी दो ना मैं बड़ी फायदेमंद है और गीत भजन नाटक सुनो भी बड़ा दाया वैसा
3: वासा धन्यवाद सा
2: आंगो मोकलो सारो धन्यवाद। प्रतिक्रिया बड़ी लंबी चूड़ी लिखी और ढाणी लाल खां जावेद खान, मान खान, सीमा बानो, विनोद खान, मुख राम, आरिफ, ईयान खान, अरशद खान, अरमान खान आ रण मिलगे लिखे है और ये काफ़ी वक्त से लिखण ला रहा है कि चौपाल माना बड़ो बढ़िया लग है और हमारी जान है और माने के गीत नाटक भजन जकाए भी सुनाया करो सा आंगी जी की फरमाई से मला पूरी होण को ला रही इकट्ठे दुख के बैठे
3: आप मन लगा थारी गलती है रामेश्वर भाई जी है
2: उसके आलो रेडियो के जो को बटन है वो कठिन कठी वो जो
3: की न की गड़बड़ है।
2: हाँ तो जावेद जी कार्यक्रम जो को है ना वो थे रेडियो शुरू करो करना जब ठंडा लगा होगा कभी मां नाटक जका है बेबी मैं सुनावा और गीत भजन जका है बेबी सुनावा पण मेल मांडो ही वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। आगा उड़ीक रहेगी कै प्रतिक्रिया जकी है बा थोड़ सी जकी है बढ़िया कार्यक्रम सुन के दियो सा चक तेरा एसपीडी से नवीन भाई अपना ती मेल पुग्या लूणा राम तंवर युवराज मयंक अनन्या पिंकी सुमन एक है खेतीबाड़ी की जानकारी दियो भाई माने बढ़िया लागे सा
3: वाह सा
2: आंगो मोकलो सारो धन्यवाद। और गांव खिंदा सर तहसील कोलाय जिला बीकानेर सुकाना राम चौहान अपने ती मेल मांडियो लिखा है का कार्यक्रम पेश करने वाला ने रामेश्वर जी ने और नवीन जी ने गणे मानसू रामा श्यामा
3: रामा श्यामा
2: और आकाशवाणी

0: सुरतगढ़ से प्रसारित होने वाला सगला कार्यक्रम लगो लग सुन ला रहा हाँ, और जकी थे जानकारी दियो गीत भजन बाजार भावसनाओ पे माने घना दाया वैसा।
1: वासा धन्यवाद।
0: ओ मेल आपने ती पुग्यू है 82 RB राइसनगर से, और आपने नितमंदिया श्रोता चेतनराम सारसवा, नौरंगराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा और रलमिल के लिखे ये आगे लिखा है कि चौपाल माने बड़ो पसंद आ रहा है, रामेश्वर भाई ने मारा कहने से घनी घनी रामा श्यामा लिखी है
1: रामा
0: सर।
1: श्यामा थाने मिलगी
0: और
1: सा
0: आगे लिखे है का आवाज अपने 2 या 3 आवाज हम कार्यक्रम जो को पेश करो बीस जी सुर हो जाए, और अब थे माने कह सीमा मिश्र की आवाज का माँ घूमर सुनाओ, अरे थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद हो सा, और आकाशवाणी सुरतगढ़ में मैं रोजाना सुना और अच्छो लगे सुन के जी सुर हो जाए, और चौपाल प्रोग्राम के हूँ लाइव सुन ला रहे हूँ, थारो मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद
1: देखो
0: सा।
1: रामेश्वर भाई आज भी फरमाइश को दिन तो कोनी, पर देखो आगे फरमाइश आप ही पूरी होगी
0: पूरी कर दी सा, आपा एक
1: है?
0: गीत
1: सीमा
0: सुना
1: मिश्रा
0: दी
1: को
0: ना,
1: गीत आपने
0: और आपा
1: सुनाई दी,
0: हाँ बिल्कुल, और अगलो मेल बांचू थे को तो
1: एक बांस दो और।
0: ओ मेल पुगे बीरवाणा से मुखराम शर्मा, और लिख्यो है आ गए पग फेरो नाटक बड़ो अच्छो लग्यो,
1: वासा
0: और प्रतिभाग्या ने बधाई दी ऐसा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सा, बधाई के
0: तो
1: लिए।
0: आंगी हाँ बधाई पूर्ति होगी बांध दी तो
1: पुग्गी भाई साहब पूरी पुग्गी।
0: हाँ। और चौपाल कई दिन कहूँ सुन ला रहे हूँ बढ़िया लगा है, और आगे लिखे का जितनी भी थे जानकारी दो भी पसंद आया ऐसा, आगे थोड़ा सो समझू बार लिखे के लिखे वो
1: मैं
0: आगे
1: कहूँ
0: पीछे
1: थाना
0: समझ
1: कहो,
0: रहे
1: मैं
0: कर
1: तावड़ा में
0: दिया
1: कम घूमया करो, थारा यहाँ समझ में
0: सा
1: बोलिया हुआ।
0: हूँ ध्यान रखूंगा सही बात को। गांव खोकर वाली श्री गंगानगर से विनोद बारा साहब, विशाल बारा साहब, विकास बारा साहब, रोशनी बारा साहब, सगुन बारा साहब भी अपने ती मेल मांडिया लिखे कर नवीन भाई, रामेश्वर भाई ने मारा कान छू गणिन गणी रामा श्यामा।
1: रामा श्यामा साहब मैं तो कुछ टेम को नहीं हो रहा कि गीत और बाकी रेडो है कि
0: गीत तो मैं कु मेल अपा बांच दिया क्योंकि
1: बांस
0: आपने
1: दो,
0: तो
1: तो 2 ही मिनट
0: हाँ,
1: रही बांस दो मैं तो कुछ
0: और
1: फटाफट।
0: आगा कार्यक्रम की बधाई लिखी है का माना पसंद आया सा, और CK13RWM शू रावसर शू अपने ती मेल मांडिया, मोहनलाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम, अनुज, मनीष, अलका, मंजू, कनिष्का, अर्चना, रिया, दीपिका, सोनाक्षी, हर्ष, चिराग, मुकुंद, राधिका आ भी कार्यक्रम की बधाई लिखी है, और ओ
1: धन्यवाद सा।
0: हाँ ओ मेल पुगे रायवाड़ी थर्मल सुरतगढ़ शू मुकेश कुमार सिकरिया, बंसीलाल, मुकुंद और राधिका सिकरिया, मंजू अंग सागे है ए भी का कार्यक्रम जो पसंद आना रहे है,
1: वासा
0: और पवन लिम्बा अमरपुरा फाजिलका शू अपने ते रामा श्यामा लिखिया कार्यक्रम जो वो आने भी पसंद आवा नवीन भाई
1: दया आना हो रही है अपने कार्यक्रम तो है।
0: बिल्कुल, और लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिलू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र चिंडालिया, नरेंद्र कुमार आम भी का कार्यक्रम जो वो बढ़िया लगे आ बात लिखी है सा, और साधुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ अपने ते दोबारा मेल मांड दियो सा,
1: दोबारा मेल मांड दियो है।
0: और ओ मेल पुग्यो नवीन भाई 19GGR सेरका तहसील टीबी जिला हनुमानगढ़ से लिखे है सोनू, चंद्रकला वर्मा, पप्पू राम, रानी देवी, दया, विनीता, मनोहर लाल वर्मा, और आगा दादा दादी एमीलाल और शांति देवी एक है कार्यक्रम जो वो माना बढ़िया लगे, और मानक है कोई बीरू राम चावरिया जी की कहानी और सुनाओ और भजन सुनाओ सा, पर बीरू राम जी भजन तो कौन गावे सा
1: भजन तो कोने का है, मैं बात करी अगर
0: हाँ
1: पूछो बने। हाँ
0: पर कहानी सुना से जरूर कार्यक्रम सुनता रहो सा। गांव गंदेली से आपने ते पालाराम स्याग, रमेश, संदीप और आगा मम्मी है बिमला स्याग, मोनिका, भावना, पोतो अंग राघव है ए भी का कार्यक्रम जो कहना पसंद आने लग रही है, और ओ मेल पुग्यू है अपने ते कनवाणी रावसर शुभ कृष्ण स्याग एक है कार्यक्रम जो वो अने अच्छो लगे सा
1: घड़ी तो देखो
0: बिल्कुल घड़ीज की है बा टिक टिक करके आगे बाजी जान ला रही
1: है,
0: है नवीन भाई,
1: तो
0: और
1: इजाजत ले लें आप। अब
0: अपने इजाजत लेने पहला आप भाई लोगों ने एक बात कही कि गर्मी अब जो की है बा थोड़ी सी लू चलना आ रही है, तो बिल्कुल ध्यान जरूर रखा सा,
1: वाह
0: अपने आज को कार्यक्रम इतो ही है, क्यों ना आप लेवा सीख और चला,
1: चलो सा
0: राम राम सा,
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर या 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना। फिल्म थी धर्मा। आइए सुने एन दत्ता का संगीतबद्ध के गीत, जिसे लिखा है साहिर ने। आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और बलवीर ने। फिल्म का नाम है साधना।

यशोदा वो अब सुनी। काला समुद्र फिल्म का गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की फिल्म है पाकीजा। पाकीजा फिल्म 1972 में बनी मशहूर बॉलीवुड हिंदी फिल्म है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कमल अमरोही थे और पाकीजा फिल्म में

मुख्य अभिनेता राजकुमार अशोक कुमार और अभिनेत्री मीना कुमारी थे। पाकीज़ा फिल्म लता मंगेशकर द्वारा गाई गीतों के लिए भी याद की जाती है। तो आइए सुने इन्हीं की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

श्रोता हूं पाकीज़ा फिल्म में मीना कुमारी अपना जीवन यापन करने के लिए कोठे पर रहती है। वो इस दुष्चक्र को तोड़ पाने में असमर्थ होती है और पाकीज़ा फिल्म की मीना कुमारी यानी नरगिस जवान होती है और एक खूबसूरत व लोकप्रिय नृत्यांगना के रूप में विख्यात हो जाती है। नवाब सलीम अहमद खान यानी राजकुमार मीना कुमारी की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मीना कुमारी को शादी के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन मीना कुमारी और साहिबजान जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पहचान लेते हैं। तब सलीम उसका नाम पाकीज़ा रख देते हैं और शादी करने के लिए

मौलवी के पास जाते हैं, तब साहिबजान सलीम की बदनामी ना हो इसलिए शादी करने से मना कर देती है और वापिस कोठे पे लौट आती है। सलीम आखिर में किसी और से शादी करने का निर्णय लेता है और साहिबजान को अपनी शादी पर नृत्य के लिए बुलाता है, आमंत्रित करता है। साहिबजान जब मुजरे के लिए आती है तो कई राज उस वक्त खुलते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज की फिल्म है पाकीजा।

श्रोताओ, पाकीज़ा फिल्म अपने गीतों के लिए भी याद की जाती है, जिनका संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था और उनकी मृत्यु के बाद फिल्म का पार्श्व संगीत नौशाद ने तैयार किया था। आइए अगला गीत सुनिए।

0: श्रोताओं, पाकीज़ा फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने वाली मीना कुमारी भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थी। मीना कुमारी, जिनका असली नाम बानो था, इनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। और मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन, मीना जी, मंजू और भारतीय सिनेमा की सिंड्रेला आदि उपनामों से भी जाना जाता है। आइए कार्यक्रम का अगला खूबसूरत गीत सुने।
1: आँखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके

श्रोताओं, मीना कुमारी एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ साथ पार्श्व गायिका और उम्दा शायर तथा कॉस्ट्यूमर डिजाइनर भी थी। मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को एक बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई। आइए श्रोताओं।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म थी पाकीजा। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स स्कैन रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। देहरादून में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी में सरबजीत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएँ जीती। और ग्लोबल शतरंज महोत्सव आज से मुंबई में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज का दिन खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और

0: रमेश शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन किया, जबकि तन्वी शर्मा भी उलटफेर करने में सफल रही। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, तन्वी, मालविका बंसोड़, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत सभी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में एक तरफा मुकाबले में पेरू की इनेस लूसिया कास्टिलो सालाजार को सीधे गेम में सिर्फ 32 मिनट में 21-13, 21-11 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ से होगा, जिन्होंने 1 घंटा 3 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में चीन की हान कियान को 22-20, 10-21, 21-14 से शिकस्त दी। दिन का सबसे बड़ा उलटफेर 17 साल की तन्वी ने किया, जिन्होंने 5वीं वरीय और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 45 मिनट में 21-12, 22-20 से शिकस्त दी। तन्वी अगले दौर में मालविका से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड की तोरुंग सेहिंग को 15-21, 21-7, 21-13 से हराया। तान्या ने अमेरिका की ऐशिका जायसवाल को 39 मिनट में 21-17, 21-18 से हराया। तान्या का मुकाबला पूर्णपावी चोचुवोंग से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लिन जडेन और विक्टोरिया जोनाडी को 27 मिनट में 21-13, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ियों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। किरण जॉर्ज, तरुण मनिपल्ली और क्वालिफायर सनित दयानंद पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात निशानेबाजी की। देहरादून में राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल इवेंट आयोजित किए गए। सरबजोत सिंह, लक्षिता, अखिल चौरान और साक्षी सुनील पाडिकर ने अपनी अपनी स्पर्धाएं जीती। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल शूटिंग रेंज में कल राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए T4 नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 4 फाइनल हुए, जिनमें पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह, आर्मी शूटर लक्षिता, पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अखिल शोराण और महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पाडेकर अपने अपने इवेंट्स में विजेता बने। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सरबजोत ने 245.9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आर्मी के शूटर अजेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में 245.1 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड चैंपियन सम्राट राणा 221.5 के स्कोर के साथ टॉप 3 में शामिल है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में आर्मी शूटर लक्षिता ने हरियाणा की सुरभि राव को सिर्फ 0.2 पॉइंट के अंतर से हराया। लक्षिता ने 240 का स्कोर किया, जबकि सुरभि ने 239.8 का स्कोर हासिल किया। उत्तर प्रदेश की मानसी आनंद ने 220.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। ISSF म्यूनिक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता सुरुचि और पलक ने क्वालिफाई करने के बावजूद फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के अखिल शराण ने नेवी के नीरज कुमार को सिर्फ 0.2 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। अखिल का स्कोर 358.3 रहा, जबकि नीरज 358.1 पर रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 345.4 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पडेकर ने 358.2 के स्कोर के साथ पहला, वहीं कर्नाटक की तिलोत्मा सेन ने 357.2 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने 345.5 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फुटबॉल की। 4 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा विश्व कप कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक है।

0: पर एक खास रिपोर्ट।
1: अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट न केवल फुटबॉल का उत्सव होगा बल्कि खेल के इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक साबित होगा। दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें एक बार फिर उन सितारों पर होंगी जो अपने देशों को विश्व विजेता बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब को डिफेंड करने के इरादे से उतरेगा, जबकि फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार हैं। सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी पर होंगी, जिनके लिए ये विश्व कप अंतिम साबित हो सकता है। 2022 में कतर में विश्व कप जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाले मेसी एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनीसियस जूनियर, स्पेन के युवा सनसनी लामिन यमाल और पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस भी इस विश्व कप के प्रमुख आकर्षण होंगे। अगर टीमों की बात करें तो अर्जेंटीना अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। फ्रांस के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन है, जबकि ब्राजील हमेशा की तरह अपनी आक्रामक शैली और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के कारण खिताब की दौड़ में है। हालांकि विश्व कप केवल दिग्गज टीमों का मंच नहीं होता, हर बार कोई ना कोई बड़ी टीम, कोई ना कोई नई टीम उलटफेर कर इतिहास रचती है। इस बार मोरक्को, जापान, सेनेगल और उरुग्वे जैसी टीमें डार्क हॉर्स मानी जा रही हैं। मोरक्को ने 2022 विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था और इस बार भी उसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले ही रोमांच से भरे होने वाले हैं। मेजबान देशों पर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन का दबाव होगा, जबकि बड़ी टीमें शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहेंगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता इसका नया प्रारूप है। 48 टीमों की भागीदारी से अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतियोगिता और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही देशों और नए सितारों के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान श्याम थापा ने कहा कि फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता पूरे विश्व में है।
2: फुटबॉल इज मोस्ट लविंग गेम सारा विश्व में। आप सारा दुनिया अभी देखने में मस्त हो जाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है। और ये आपसे नहीं, बहुत दो वर्षों से ये जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग के टाइम आगे से फुटबॉल में लिया जाता था, लेकिन ऐसे नाम अभी हम लोग जो रोनाल्डो, मेसी, ऐसे ऐसे कलाकार फुटबॉल में, उनको कौन भूल सकता है। मेरे को लगता है फुटबॉल जैसा क्रेज सारा विश्व में और कोई दूसरा गेम में नहीं है।
1: अगले कई सप्ताह पूरी दुनिया फुटबॉल के रंग में रंगी होगी। कहीं मेसी की आखिरी विश्व कप की कहानी लिखी जाएगी, कहीं एम्बाप्पे जैसे युवा सितारे अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं अनजान खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सपनों, जुनून, गौरव और इतिहास का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
0: शतरंज की मुंबई में 360 ग्लोबल शतरंज महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 18 जून तक खेली जाएगी, जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता एस किशोर की एक रिपोर्ट।
3: 58 लीडिंग चेस प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग 16 कंट्रीज, अमंग दम 14 ग्रैंड मास्टर्स, 34 इंटरनेशनल मास्टर्स, 6 फिडे मास्टर्स, 2 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स एंड 2 कैंडिडेट मास्टर्स कंप्राइज द स्टार स्टडेड फील्ड दैट विल फीचर इन द मास्टर्स सेक्शन कैटेगरी ए ऑफ द 361 मास्टर्स चेस टूर्नामेंट विच गॉट अंडर वे एट द एक्सपो हॉल एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई टूडे। The Masters section is the flagship event of the Rs 60 lakhs prize money 361 Global Chess Festival organized by the Indian Chess School and brings together some of the strongest players from India and around the world with an average rating of 2,359. Conducted in a classical format of 9-round Swiss League, the tournament provides an ideal platform for players to compete for rating points.
0: Arabad. महिला विश्व कप की महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब अपने पहले T20 विश्व कप खिताब पर होगी। भारतीय महिला क्रिकेट में जब भी बड़े मैचों और बड़े मौकों की बात होती है तो एक नाम लगातार चर्चा में रहता है, जेमिमा रॉड्रिक्स।
4: From Jemima Roderick, face of a legs from Jemmy, and races away for four.

0: giving hope to the nation as a whole.
1: She's a superstar.
0: Geneva Rodrigues! Listen to that! It is one of the great innings, the greatest run chase in the history of women's one-day internationals.
2: एक दिवसीय विश्व कप की तरह ही भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस T20 विश्व कप में भी जेमिमा से उम्मीदें होंगी।
3: हाल के वर्षों में अपनी आक्रामक लेकिन संयमित बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स ने दबाव भरे मुकाबलों में खुद को भारत की मध्यम क्रम की रीढ़ के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर का सबसे यादगार अध्याय ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक पारी रही। उस मैच में भारत ने 339 रन का लक्ष्य हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली और भारत की अब तक की सबसे बड़ी रन चेस की नींव रखी। इस पारी में उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया बल्कि दबाव में मानसिक मजबूती का भी शानदार उदाहरण पेश किया।
4: I was not doing well mentally, going through a lot of anxiety. Then being dropped was another challenge for me. But I think all I had to do was show up. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and he fought for me.
3: इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मंचों पर उनका प्रदर्शन चर्चा में रहा है। 2022 महिला विश्व कप में भले ही भारत खिताब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उस दौर से जेमिमा के खेल में निरंतरता और परिपक्वता दिखने लगी थी। उसी दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उपयोगी पारियां खेलकर ये संकेत दे दिया था कि वह बड़े मैचों की खिलाड़ी बन सकती हैं। हाल के वर्षों में उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास में लगातार सुधार देखने को मिला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उन्होंने कई बार मध्य क्रम में आकर पारी को संभाला और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बनाए। 2025 के विश्व कप अभियान में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने दबाव में टीम को स्थिरता देने का काम भी किया। अब जब भारत आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की तैयारी कर रहा है टीम की उम्मीदें एक बार फिर जेमिमा जैसे खिलाड़ियों पर टिकी है। हाल ही में उन्होंने भी माना है कि पिछले एक दिवसीय विश्व कप की जीत ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है और अब भारतीय टीम हर बड़े मुकाबले में जीत का दावा करने की मानसिकता के साथ उतर रही है।
4: I think what happened about winning that World Cup is everyone was a part of it. Everyone knows what pressure is like. But at the same time, everyone knows that, okay, we have crossed the line once. We can do it again. And that rubs off, that belief. You know, a lot of times we visualized it so much, but now we've lived it. So it helps us believe even more that we can do it again.
2: और अब बात तीरंदाजी की। हैदराबाद 8 से 18 अक्टूबर तक तीरंदाजी प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र की मेजबानी करेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ईमेल ID sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति

0: निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का

0: आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं चंदन दास।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में चंदन दास को। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है अनुप्रसाद की जाएगी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति

0: व्यक्ति की है। भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता, बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
0: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है, कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो, कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे, हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित

0: करने के लिए। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है। अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो, या नासिक से कर्नाटक हो, या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से, या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म एमएसपी रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने एमएसपी को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी, जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो, या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के

0: अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेहड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे। मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज
1: जी
2: जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर

0: जाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, आप हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी,

0: इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
0: जी
1: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
0: जी
1: कि
0: सर,
1: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।

0: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हेलो मन भावन। निर्देशक व संयोजक हैं नवीन सिसोदिया। प्रस्तोता हैं विकास पारिक।
6: हेलो मन भावन के सभी श्रोताओं को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपके फोन कॉल से आपके पसंद के गीतों का सिलसिला शुरू करने से पहले बात करें आज की, आज के दिन की। आज पुण्यतिथि है फिल्म जगत के उस कलाकार की जिन्होंने हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका और अपनी संवाद अदायगी से एक अलग पहचान बनाई, जिन्हें हम जीवन के नाम से जानते हैं। आपका वास्तविक नाम ओंकार नाथ धर था। आपका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को हुआ। अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। आपकी प्रमुख फिल्मों में दिल ने फिर याद किया, हमराज, अमर अकबर एंथनी, नसीब, याराना जैसी अनेक बेहतरीन फिल्में थीं। लेकिन जीवन की पहचान फिल्मों के चाहने वालों के बीच किस भूमिका ने बनाई, वो थी उनके द्वारा निभाई गई नारद की भूमिका। यकीन जाने हमारे जैसे न जाने कितने लोग जीवन को ही देवऋषि नारद मानते हैं। इधर की उधर करने में जो लहजा चाहिए वो जीवन के पास था। आइए याद करें फिल्मों के लिए समर्पित इस अभिनेता को और उन पर फिल्माए इस गीत से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करें और आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार करें।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार। ठीक
0: अरे नमस्कार जी, सतीश जी कैसे हैं?
1: है विकास भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? आपकी पूरे आकाशवाणी टीम कैसी है भाई साहब? सब बढ़िया?
0: बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपसे तो 1 महीने के बाद में बात हो रही है, इसलिए पूछना
1: जी भाई
0: बनता
1: साहब,
0: है।
1: जी भाई साहब, जी भाई साहब।
0: पिछला फोन आपने कब किया था सतीश जी?
1: 1 महीने को ऊपर हो गया सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने पूछा।
1: नहीं बिल्कुल, आपका पूछना भी सही है सर मेरा, क्योंकि नए नए श्रोता जुड़ने भी चाहिए, हम जैसे तो पुराने हो गए क्या।
0: सही बात है आपकी, सभी श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
1: जी भाई साहब।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं, ये पूछना चाहते हैं हम आपसे।
1: अच्छा आपके केंद्र से? जी
0: बिल्कुल
1: सर, मैं आपके केंद्र से रामचरितमानस सुनता हूँ, मनु मंगल सुनता हूँ, चौपाल सुनता हूँ, खेत कल्याण सुनता हूँ, चौपाल गीतारो गजरो युवाणी कार्यक्रम सुनता हूँ, गीत गंगा सुनता हूँ, मिट्टी दी खुशबू सुनता हूँ, गौरवन सुनता हूँ, अनुरोध गीत सुनता हूँ, सदाबहार नगमे सुनता हूँ, गीत माला गीत बहार एक ही फिल्म से और बहनों के कार्यक्रम, सुगम संगीत साहित्य संगीत गजल का कार्यक्रम, घर आंगनियों और शाम को जो भजन का कार्यक्रम है वो भी सुनता हूँ सर।
0: क्या बात है, ये बता करके आपने बता दिया कि आप हमारे केंद्र से सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक जुड़े रहते हैं।
1: जुड़े हम नहीं रहते, पूरा परिवार जुड़ा रहता है सर, मानो आप।
0: क्या बात है, यही आपका प्रेम इस केंद्र से यूं ही बना रहे सतीश जी।
1: तो सर एक फिल्म आई थी सन 1970 में, जिसमें प्रेम लता जी हम दोनों की पसंद का गीत है सर, ये फिल्म का नाम मेरे हम सफर
0: जी
1: गीत के बोले, किसी राह पर किसी मोड़ पर मुझे छोड़ न देना हम सफर। गायक का कलाकार मुकेश जी लता जी, गीत आनंद बख्शी, संगीत का कल्याण जी आनंद जी, और कलाकार थे जितेंद्र सलमान टैगोर मुख्य कलाकार थे। और सर ये गीत होता है जो एक लोरी के अंदर होता है,
0: जी
1: और इस गीत में जो बांसुरी का साथ दिया था, जो कल्याण जी आनंद जी की जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी, उन्होंने बांसुरी का साथ दिया था।
0: बहुत बेहतरीन जानकारी आप देते हैं सतीश जी। आपसे जब फोन पे बात होती है ना, तो
1: जी
0: यकीनन
1: भाई साहब।
0: हमारे श्रोताओं को हमें बहुत सी नई नई जानकारियां मिलती है।
1: और रात को जो गोरबंदर गीत गंगा रोहित भाई ने कार्यक्रम दोनों पेश किए ना भाई साहब,
0: जी
1: अरे यू मानो साहब, 4 चाल में 40 चांद लगे, शोभा गोटो के गीत सुनाए साहब उसमें, घोसला साहब के वो मैं बता निर्देशक साहब का दिन था ना,
0: जी
1: मजा आ गया सर। इतना बढ़िया प्रोग्राम ला, सब कुछ मिला के दोनों प्रोग्राम लाजवाब रहिए, इसके लिए अपने सर जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, सर जी को, नवीन सिसोदिया जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार की ओर से सर।
0: आपकी बधाई सभी तक पहुंच रही है, और अब आप सुने अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी, पहली बार आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया है क्या?
1: नहीं सर, एक दो बार मैंने और आपके प्रोग्राम में कॉल किया है, और मैं सर अंतराल की बात लगाता हूँ 1-1.5-2 महीने में, कि लगभग हमारे जो अन्य श्रोता है उनको अगर मौका मिले तो कुछ अच्छा रहे।
0: बहुत अच्छी सोच है आपकी, यही प्रयास हमारा भी रहता है। क्या करते हैं आप?
1: सर जी, छोटी सी शॉप है मेरी, कपड़े वाली जो सिलाई मशीन है सर, वो चलाता हूँ, टेलर हूँ सर जी मैं।
0: चलो, ठीक चल रहा है काम?
1: बिल्कुल सर, बढ़िया।
0: तो आपके साथ कौन कौन होते हैं कार्यक्रम में जब आप सुनते हैं?
1: सर जी, कार्यक्रम में तो हमारी जो पूरी फैमिली है वो तो सुनती ही है, और मेरी शॉप पर हमारे बड़े भैया हैं, वो भी मशीन चलाते हैं तो वो सुनते हैं, और जो आने वाले जो हमारे ग्राहक हैं, आपका कार्यक्रम एक भी ऐसा नहीं हुआ जो एक ना एक दिन ग्राहक आपका प्रोग्राम सुनने को ना आए हों। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यूं ही ग्राहकों को जोड़े रखें हमारे केंद्र से और अपने काम से।
1: जी सर।
0: आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर जी, आज के प्रोग्राम में आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा जॉनी मेरा नाम, इस मूवी से सुनवा दो सर आप।
0: हेलो। हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: राम प्रताप शुक्ल, सुरामी से।
0: राम प्रताप जी, इससे पहले भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन किया है?
2: नहीं जी, नहीं किया, प्रयास नहीं किया जी।
0: और इस बार पहली बार प्रयास किया और आपका फोन लग गया।
2: हाँ जी,
0: हमारे जो श्रोता है ना, उनकी ये शिकायत रहती है कि हमारे फोन मिलते नहीं है, तो आज आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो राम प्रताप जी, क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी करते हैं।
0: आपके साथ कौन कौन होंगे जब आप ये कार्यक्रम सुनेंगे?
2: हमारी पत्नी है संतोष, सुशील कुमार हमारा बेटा जी, एक पोता और नौ सौकर।
0: तो इन सब के साथ कौन सा गीत आज सुनेंगे?
2: जोनी मेरा नाम फिल्म।
0: कौन सा गीत
2: बाबुल प्यारे
0: सुनवाते हैं हम आपको, आपकी पसंद का ये गीत?

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, बिल्लू सूद साहब, क्या हाल है?
1: आपने तो आवाज पहचान ली सर।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ तो पहचानेंगे। आप जो दो लाइनें सुनाते हैं वो भी हमें आपसे सुननी है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, गुलजार साहब की दो लाइनें आपको भी मैं सुना रहा हूँ। फर्क बहुत है तेरी और मेरी समझ में, तूने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है।
0: कहते हैं कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, और मुझे गम है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।
1: वाह सर वाह, क्या बात है सर। ये अच्छा लगता है जब आप बात पर बात सुनाते हो तो, है ना जी।
0: बहुत अच्छा लगता है हमें भी सूद साहब आपसे बात करके।
1: सर मेरी बात सुनो, अब ये गर्मी का मौसम है, आपने इतनी बढ़िया बात सुनाई है तो शायद हो सकता है कहीं भगवान इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए।
0: बिल्कुल प्रसन्न होंगे, और सब जगह ठंडा मौसम भी आएगा, बरसात भी आएगी। कहते हैं ना कि अंधकार के बाद में प्रकाश आता है, उसी तरह से गर्मी के बाद में वर्षा भी आएगी।
1: सर ये 90 वर्ष का आपने ये मनाया मिलन का, वो बहुत अच्छा लगा जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत बधाई देते हैं कि 90 वर्षों से जो हम भी 30 वर्षों से जुड़े हुए आकाशवाणी में
0: आप आगे भी यूं ही जुड़े रहें।
1: जी, जब तक तो सांस है तब तक तो रेडियो हमारे साथ है जी। तो
0: बिल्कुल, आपकी सांसें लंबी चलती रहें, हम यही ईश्वर से दुआ करते हैं।
1: एक बड़ा प्यारा सा गीत मैंने चुना है आज।
0: आपके साथ कौन कौन है,
1: मैं
0: पहले आप वो बताएं।
1: बिल्कुल जी, मेरे साथ है लाल दर्जी है, हीरा लाल जी धान का है, विश्वजीत मेरा बेटा है, आशीष सूद है, चांदनी है, और हमारे सुनने वाले मित्र आप और हम सब सुन रहे हैं जी।
0: बिल्कुल, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्या सुनेंगे आज?
1: बड़ा खिलाड़ी फिल्म का गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है, इस गीत के वर्डिंग बहुत ही प्यारे हैं। गीत बड़ा प्यारा जी, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है, तरह तरह के खेल वो रचता।
0: सुनिए आप अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं संदीप सोनग्रह बात कर रहा हूँ, गांव सिरसला जिला चूरू से।
0: क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: जी सर मैं लेडीज सिलाई का काम करता हूँ सर।
0: कितने समय से आप हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं?
1: हम आपके प्रोग्राम आज से करीब 10 साल पहले से सुन रहे हैं।
0: पसंद आ रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: जी सर बेहतरीन प्रोग्राम आपके केंद्र से आते हैं और रोजाना ऐसा कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जो फरमाइशी हमारे श्रोताओं तक आपका प्रोग्राम नहीं पहुँच पाए।
0: बहुत अच्छी बात है, आप नियमित रूप से हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं। सोनग्रा जी, आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: सर आज हमारे साथ में हमारा लड़का है कार्तिक, हमारी लड़की है प्राची और हमारी वाइफ भी हमारे साथ में प्रोग्राम सुनती है, उनका नाम है सोमवर।
0: कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: सर आज मैं सुनना चाहूंगा सर उमराव जान फिल्म का गाना है सर, आशा भोसले की आवाज, दिल चीज क्या है।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।
2: हाँ।

0: हेलो।
1: हेलो सूरतगढ़
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन, सूरतगढ़ कॉटन सिटी चैनल।
1: जी, मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, बिहार के वैशाली जिले से। बहुत दिन से तमन्ना थी कि आप लोगों से बात करूँ।
0: इतनी दूर से आपने फोन किया है और इतने दिनों के बाद में आपकी तमन्ना पूरी हुई है।
1: जी, मेरे साथी लोग ने बताया है, गजराज लोधी है, विजय कुमार पांडे हैं, शारदा बाबू है, इन लोग ने।
0: इस कार्यक्रम के बारे में बताया।
1: जी,
0: और भी सूरतगढ़ केंद्र के कार्यक्रम आप सुनते हैं क्या?
1: नहीं नहीं पकड़ता है, कभी कभी पकड़ता है, कभी कभी नहीं पकड़ता है।
0: अब तो हमारे जो केंद्र हैं सभी ऑनलाइन AIR मोबाइल ऐप पर भी हैं, वहाँ पे आप सुन सकते हैं आराम से हमारे केंद्र के कार्यक्रम। किसके डॉक्टर हैं आप?
1: जनरल फिजिशियन हूँ, मरीज की सेवा करता हूँ।
0: चलो, आप अपनी सेवाएं यूं ही देते रहें और आपके हाथों से लोग जो हैं वो स्वस्थ होते रहें, यही हम दुआ करते हैं।
1: आपका नाम सर जी?
0: मेरा नाम विकास पारिक है।
1: जी, आपको भगवान खूब स्वस्थ रखे, जो हम लोग का मन लगता रहे।
0: हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमेशा खुश रहें। आज आपके साथ कार्यक्रम में कौन कौन होंगे उनके नाम भी बता दें।
1: गजराज लोधी हैं, विजय कुमार पांडे हैं, शारदा बाबू हैं, और आप सर जी हुए। फिल्म
0: बिल्कुल, हम आपके साथ हैं हमेशा। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: लैला मजनू का, उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। भंवर सिंह मीणा बात कर रहा हूँ, झुंझुनू जिले के हमीरी कला गांव से।
0: भंवर जी, क्या
1: जी सर।
0: करते हैं आप?
1: जी सर मैं पेशे से शिक्षक हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन कार्य से आप जुड़े हुए हैं, समाज का निर्माण आप कर रहे हैं।
1: जी सर।
0: विद्यालय आपका किस स्तर तक का है?
1: सर मैं सीनियर तक स्कूल है और सेकंड ग्रेड टीचर हूँ इंग्लिश से, तो मुझे जो है वो 9th से 12th तक की जो क्लास है वो लेनी पड़ती है।
0: अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं आप?
1: जी।
0: रिजल्ट बढ़िया रहते हैं बच्चों के?
1: जी सर बिल्कुल कोशिश रहती है। और जो बेसिक चीजें हैं ना वो अगर लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हमें कम हो सकती है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर उन चीजों को हम कहीं से रिलेट करते हैं ना, मतलब किसी से जोड़ देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो थोड़ा सा काम हमारा टीचिंग में इजी हो जाता है।
0: बहुत अच्छी तकनीक से आप पढ़ाते हैं। हमारे केंद्र से आप कब से जुड़े हुए हैं?
1: सर वैसे तो मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ और अभी जैसे न्यूज ऑन एयर पर आने के बाद प्रोग्राम भी लगभग रोज तो नहीं सुन पाता, पर फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ।
0: कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: मेरा पसंदीदा जो प्रोग्राम है वो भक्ति संगीत और उसके अलावा शाम को जो चौपाल कार्यक्रम आता है,
0: जी,
1: पसंदीदा प्रोग्राम्स में से हैं।
0: आप हमारे केंद्र से यूं ही जुड़े रहें। आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम में?
1: जी सर मैं हूँ और मेरा पूरा परिवार है।
0: कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: जी सर खानदान फिल्म से सुनना चाहूंगा, नील गगन पे उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भवन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: भिकार जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हम आपको पहचान नहीं पाए।
1: गांव जैसला जिला फलोदी।
0: क्या बात है, क्या बात है बिश्नोई जी, बहुत समय बाद आपने फोन किया आज।
1: जी सर, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल बाद कॉल किया सर।
0: ऐसी क्या बात रही कि 2 साल तक आपने फोन नहीं किया? कोई
1: सर
0: नाराजगी तो
1: प्रोग्राम
0: नहीं?
1: तो सुनता हूँ लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, समय नहीं मिलता। और नए श्रोताओं को मौका देने का काम कर रहे हैं क्योंकि जितने नए श्रोता जुड़ते हैं उतना ही अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छी सोच है आपकी विश्नोई जी। आप जैसे श्रोता जब हमारे साथ है ना, तो यकीनन हमारा केंद्र आगे से आगे बढ़ता जाएगा।
1: बिल्कुल सर, प्रोग्राम मैं नियमित रूप से सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी
0: आज
1: सर।
0: आपके साथ कौन कौन है?
1: सर जी, मेरे साथ तो वैसे सारे मित्र ही है, मुरारी जी है और गजानंद जी है, सारे लोग सुनते हैं बैठ करके। सर
0: क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
1: आज धर्मात्मा फिल्म का एक गीत है ना, क्या
0: कौन सा गीत
1: खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
0: सुनवाते हैं हम आपको, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन फरमा रहे हैं?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: केशव जी, पहली बार आपका फोन हमारे इस कार्यक्रम में लगा है शायद।
1: कोई साल पहले लगा था, अब साल के बाद लग रहा है।
0: लगभग 1 साल हो गया आपका फोन किए हुए।
1: हाँ, लगता ही नहीं है।
0: आप जैसे श्रोताओं के फोन लगे, इसीलिए हमने ये नियम बनाया है कि 1 महीने तक हम किसी भी श्रोता के फोन को रिपीट नहीं करते,
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ
0: ताकि आप जैसे जो श्रोता हैं, ये शिकायत
1: हाँ
0: रहती है कि हमारे फोन नहीं लगते थे, उनको भी मौका मिलता रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: केशव जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं रिटायर्ड हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। घर का काम देखते हैं, खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत।
0: अच्छा, जीवन चल रहा है।
1: जी जी सर, बहुत अच्छा है। तो साथ में कुछ साथियों के नाम ले सकते हैं कि नहीं?
0: हाँ जी, बिल्कुल लीजिए नाम।
1: मैडम है मेरी श्रीमती सुषमा रानी है, बच्ची है मेरी अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई सतपाल शर्मा है, और एक मेरा दोस्त है यूपी से विजय पांडे जी हैं, एक हमारे कठुआ से हैं वयोवृद्ध, वो भी टीचर ही रिटायर हुए हैं, उनकी एज है तकरीबन 92 साल से ऊपर है, उनको भी रेडियो सुनने का बड़ा शौक है, उनका नाम है विजय रतन शर्मा जी। भी हैं लेखक भी हैं।
0: चलो, उनको भी सुनवाएंगे, लेकिन गीत आप बताएं।
1: प्रेम रो का सुना दीजिए, ये गलियां जे चुबारा जहां आना ना दोबारा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, हेलो मनभावन सिंह।
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, 14 PS 20 है। ठीक
0: कैसे हैं कुलदीप जी आप?
1: है जी, बहुत बढ़िया।
0: क्या करते हैं कुलदीप जी आप?
1: कारपेंटर का काम। हाँ
0: अच्छा चल रहा है काम?
1: जी, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है जी।
0: हमारे केंद्र से कब से जुड़े हुए हैं आप?
1: बहुत समय हो गया जी, कई सालों से जुड़े हैं। पहले बचपन में भी सुनते थे, कई प्रोग्राम सुनते थे।
0: अच्छा, कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है?
1: हाँ जी, हेलो मन भावन, मिट्टी की खुशबू, गोलबंद, गीत गंगा, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जी।
0: आपके साथ कौन कौन होते हैं जब आप हमारे कार्यक्रम सुना करते
1: हाँ
0: हैं?
1: जी, मेरी वाइफ है जी राजविंदर कौर, बेटे हैं संदीप सिंह, जसकरण सिंह, मनराज विर्क।
0: इन सबको कौन सा गीत आज सुनवाएंगे?
1: सब कोई भी आपकी पसंद का कोई भी गाना सुना दो जी। हाँ
0: हेलो,
2: जी सर,
0: कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं सर मयंक शर्मा बोल रहा हूँ, जयपुर।
0: क्या करते हैं मयंक जी आप?
2: जयपुर में होलसेलर हूँ सर मैं, ड्राई फ्रूट का।
0: किस किस क्षेत्र में आप सप्लाई किया करते हैं?
2: अपने सर गंगानगर में भी देते हैं, और मतलब जैसे जयपुर के नजदीकी क्षेत्र है उनमें भी देते हैं, और दिल्ली, जोधपुर।
0: लोकल जयपुर में भी सप्लाई करते हैं?
2: हाँ जी सर, जयपुर में भी सप्लाई करते हैं, ऑनलाइन है सर अपना काम।
0: काम बढ़िया चल रहा है?
2: हाँ जी सर, कृपा है मालिक की।
0: चलो, ये कृपा यूं ही बनी रहनी चाहिए। कब से आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं?
2: मतलब मैं जुड़ा तो काफी टाइम से हुआ हूँ, सुबह 6 बजे उठते मैं मेरा रेडियो ऑन कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: आज आपके साथ कौन कौन है इस कार्यक्रम के लिए?
2: मेरे साथ सर मेरा अपने ड्राई फ्रूट में काम करने वाला स्टाफ है, और मेरे कुछ खास प्रियजन और मित्रजन है, और सर मेरे माता पिता जी।
0: उनके नाम लेना चाहेंगे?
2: हाँ जी सर, मोहन शर्मा, निर्मल शर्मा, कार्तिक शर्मा, सर अंकित धुनकर।
0: तो क्या सुनवाएंगे इन सभी को आज?
2: इन सभी को सर आज कोई अच्छा सा किशोर कुमार जी का मनमोहक सा गाना सुना दो।
0: यानी हमारी और हमारे श्रोताओं की पसंद का कोई भी गीत आपको सुनवा दें।
2: हाँ जी सर, कोई भी।
0: सुनिए अपनी पसंद का और हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: मैं बोल रही हूँ मोना, सहारनपुर, यूपी से। और जब भी फरमाइशी प्रोग्राम आता है उसमें सहारनपुर के बहुत सारे खत आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज फोन लगाकर देखा जाए, शायद लग जाए। खुशी हो रही है आपसे बात करके। आप कौन बोल रहे हैं?
0: विकास पारिक से आपकी बात हो रही है।
1: विकास जी, ओके। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो भी आपको सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहारनपुर के, और भी जगह जगह के साथी आपसे जुड़े हैं, आपको सुनते हैं ऑनलाइन, पसंद करते हैं आपका प्रोग्राम। और खास जो ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है, ये तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें खुद की आवाज भी सुनने को मिल जाती है।
0: कुल मिलाकर के पसंद आते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: जी, बहुत अच्छे लगते हैं
0: रेडियो पे सुनते हैं या मोबाइल ऐप पे?
1: मोबाइल ऐप से, क्योंकि रेडियो से तो सूरतगढ़ नहीं कैच हो पाता है, तो मोबाइल ऐप से ही सुनना है हमको।
0: मोबाइल ऐप से ये फायदा हो गया कि आप किसी भी केंद्र के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये फायदा हो गया है भाई। बहुत
0: क्या करती हैं मोना
1: अच्छा
0: जी
1: लग,
0: आप?
1: मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मतलब अपना घर देखती हूँ। एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, सास ससुर देवर जेठ जेठानी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली की ये बात है कि ज्वाइंट फैमिली के फायदे बहुत हैं। आप निश्चिंत होकर घर से जा सकते हैं कि पीछे देखने वाले आपके सब बड़े हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, संयुक्त परिवार के फायदे हैं, नुकसान नहीं है।
1: हाँ,
0: आज आपके साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन है?
1: हमारे साथ कार्यक्रम में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो गुड़गांव से हैं मेरे कुछ दोस्त, गौरव, नताशा है, नितिन है, प्रगति है, और सूरतगढ़ के भी कुछ साथी हैं हमारे, और वो भी साथ में सुनते हैं। वंदना है, कविता है, और आपके जो केंद्र से अनाउंसर साथी हैं, उन सबकी जो पसंद है वो बहुत अच्छी लगती है, आनंद आता है सुन।
0: बहुत अच्छी बातें आज आपसे हुई। इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मुझे पुराने गीत पसंद हैं, और आज एक पुराना सा गीत, मीठा सा गीत सुनना चाहेंगे। अगर आप कहें तो एक लाइन गुनगुना देती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं।
0: नहीं, बिल्कुल गुनगुनाइए, हम भी सुनना चाहेंगे।
1: ये गाना है फिल्म पतंग का।

0: हमारे जो साथी सुनेंगे मुझे अपनी सखी को, उनको मेरी याद आएगी, बस इसी उम्मीद से गाना सुनना चाहती हूँ। थैंक
1: बहुत अच्छा गाती हैं पूना जी।
0: यू, आपसे
1: अब ऐसी ही आवाज
0: बात।
1: में हम आपको आपकी पसंद का गीत भी सुनवा दें,
0: बिल्कुल
1: सुनिए।
0: हम सुनेंगे। शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ, कश्मीर से।
0: कार्यक्रम हेलो मन भावन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं लतीफ अहमद रीना,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कश्मीर सोनामर्ग।
0: सोनमर्ग से आप बात कर रहे हैं।
1: हाँ, इस
0: कैसा मौसम है कश्मीर में इस वक्त?
1: समय तो मौसम सुहाना है, ठीक है। अभी गर्मी भी बढ़ने लगा,
0: सोनमर्ग में भी गर्मी है? हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे भी गर्मी होती है?
1: लगभग 23-21 इतना इतना गर्मी रहता है अभी।
0: 20-21 डिग्री तापमान रहता है,
1: हाँ, इतना रहता है।
0: तो पर्यटक तो खूब आते होंगे वहाँ पे।
1: बहुत सारा रश लगा है यहाँ।
0: आप क्या करते हैं रैना जी?
1: अपने ही घर में होता हूँ।
0: कार्यक्रम आप हमारे नियमित रूप से सुनते हैं?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ कौन कौन है,
1: बस सभी श्रोता हमारे साथ है।
0: क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: सुनाइए फिर मोहम्मद रफी की आवाज।
0: सुनिए अपनी पसंद का और हमारी पसंद का ये गीत।
2: और कुछ देर ठहर,

आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अमीलाल भाटिया का और ओम प्रकाश वर्मा का। कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया, कंसोल पे हमारे साथी दुर्गाराम नायक। यदि आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 तक हमारे फ़ोन नंबर 01509-220-992 और 220-993 पे फ़ोन कर सकते हैं। आप ये गीत सुनें और अपने साथी विकास पारिक को अनुमति दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: फेर और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा और कुछ देर ठहर।
1: अभी आप सुन रहे थे हेलो मन भवन। निर्देशक व संयोजक थे नवीन सिसोदिया। प्रस्तोता थे विकास पारिक। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष

0: उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in